मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026 दिन सोमवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन सुख का मूल। आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का है।
1: इस संसार का कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, कीट पतंग भी दुख नहीं चाहते। सभी सुखी चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं, यानी कि उन्हें अपने पहले के कर्मों के अनुसार निर्धारित फल भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि उभय योनि है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नए कर्म करने का अवसर भी पाते हैं। इसीलिए मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को सुंदर शरीर के साथ साथ आत्मा दी है, उसकी सहायता के लिए मन बुद्धि और इंद्रियां भी दी है। इनके सदुपयोग से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक विडंबना है, मनुष्य इस धरती पर जीवन भर सुख की तलाश करता रहता है और सुख उसे मिलता नहीं। आखिर कारण क्या है? आइए हम नीति की एक उक्ति पर विचार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी कि धर्माचरण से ही सुख प्राप्त होता है। कहने का आशय है कि सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना ही धर्म है। वैसे तो धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, यानी जिसे धारण किया जाए। मनुस्मृति में धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी का परित्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, सद्बुद्धि, विद्या प्राप्ति, सत्य और अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण बताए गए हैं। इन्हें जीवन में अपनाना ही धार्मिक होना है। कहने का आशय है कि यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारते, यदि हम दूसरों को क्षमा करने का गुण रखते हैं, हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और मन हमें इधर उधर नहीं भटकाता, हम चोरी की ओर आकर्षित नहीं होते, हम पवित्रता रखते हैं, हमें अपनी इंद्रियों पर संयम है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम सच की राह पर चलते हैं, हम क्रोध नहीं करते, तो हम धार्मिक हैं। हम धर्म के लक्षणों को आत्मसात जितने अंशों में करेंगे, उतने ही अंशों में हम धार्मिक बनते जाएंगे। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि धर्म का अर्थ सदाचार है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा।

0: किसी विद्वान ने कहा है, मनुष्य धर्म का फल सुख चाहता है अपने लिए, लेकिन धर्माचरण नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, फिर भी जानबूझकर पाप करता है। अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें धर्म के सही आशय को समझना होगा और धर्म अर्थात सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। धर्म के इसी भाव को आचार परमो धर्म भी कहा गया है, यानी आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार का मतलब सदाचार। मनुष्य के कर्म ही सुख और दुख के कारण होते हैं। वो चाहे तो सुखी रह सकता है, दुख से दूर रह सकता है। इसीलिए हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ऐसे कर्म करने चाहिए, दूसरों को भी ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए जो सबके हित में हो। इससे हमारा खुद का भी भला होगा और इस संसार का भी। तो आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन। आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब सुनिए कृषि चर्चा, टमाटर की उन्नत खेती। वाचन स्वर शांतनु कुमार मिश्र का है।
2: कृषि चर्चा के संग हम शांतनु कुमार मिश्र। किसान भाई, सब्जी में टमाटर के अहम स्थान है। एकर आधुनिक पद्धति के संग खेती कैल जाए तो बेसी से बेसी उपजा प्राप्त कैल जा सकते है। किसान भाई, टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पायल जाते है। बेसी उपजा हुआ पर नीक कैचा कमायल जा सकते है। किसान भाई, टमाटर के खेती सब प्रकार के माटि में कैल जा सकते है। ओना टमाटर के खेती के लेल पानी निकासी वाला रेतेली डोमट माटि जाहि में जीवांश प्रचुर मात्रा में पायल जाए, ओहन खेत के चुनाव क के टमाटर के खेती करबा के चाहिए। खेत के नीक जना 3-4 जोताई क माटि पलट वाला हर से करबा के चाहिए। संगे देसी हर से 1-2 जोताई केला के बाद खेत समतल क लेबा के चाहिए। किसान भाई, टमाटर के फसल के लेल नीक तापमान 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीक मानल जात है। बेसी तापमान हुआ पर फूल आ कच्चा फल गिर लगत है। एक हेक्टेयर खेत के रोपाई के लेल 350-400 ग्राम बिया के आवश्यकता होत है। संगे संकर किस्म के लेल 200-250 ग्राम बिया लगत है। खरीफ फसल के नर्सरी में बुआई जुलाई से सितंबर मास में कैल जात है। जखन कि पौध पूरा तरह से तैयार भ जाए तखन गाछ उखाड़ कर खेत में लगेबा के चाहिए। किसान भाई, टमाटर के उन्नतशील प्रभेद में पूसा गौरव, DBRT काशी अनुपम, H83 काशी विशेष, हिसार अरुण, DBRT1 हिसार लालिमा, पूसा शीतल, पंत बहार है। किसान भाई, संकर किस्म में अविनाश 2, अंगूर लता, NS 815, BSS 99, BSS 40 आदि किस्म के चुनाव कर खेती करबा के चाहिए। किसान भाई, खेत में पौध रोपा से पहले माटि में गोबर के खाद द कर निक जना मिला देबा के चाहिए। संगे क्यारी जमीन से उठल हेबा के चाहिए। क्यारी के लंबाई तकरीबन 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर रखबा के चाहिए। किसान भाई, टमाटर के पौध घन हुआ पर आर्द्र गलन बीमारी लग जात है। अह लेल दूरी बना कर पौध के रोपबा के चाहिए। घनगर गाछ हुआ पर उखाड़ कर फेंक देबा के चाहिए। किसान भाई, खाद उर्वरक में 20-25 टन सरल गोबर के खाद, कंपोस्ट 150 किलोग्राम, नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम देबा के चाहिए। फास्फोरस और पोटास के पूरा मात्रा, नाइट्रोजन के 1/3 मात्रा रोपबा से पहले खेत में मिला देबा के चाहिए। नाइट्रोजन के बाकी मात्रा 2 बराबर भाग में बैठ कर 20-25 व 45-50 दिन के बाद टॉप डेसिंग करवा के चाहिए। किसान भाई, खरपतवार खुरपी या कोदाल से निकालत रहवा के चाहिए। बेसी खरपतवार हुआ पर रासायनिक दवाई के उपयोग करवा के चाहिए। पौध के रोपाई 2-3 दिन धरि फुहारा देबा के चाहिए। पानी नहीं हुआ पर 10-15 दिन के अंतराल पर पटौनी करवा के चाहिए। किसान भाई, बाजार में मांग के अनुसार टमाटर के किछ दिन धरि स्टोर कैल जा सकत है। हरा टमाटर के 12.5 डिग्री तापमान पर 30 दिन धरि राखल जा सकते है। संगे पाकल टमाटर के 4-5

0: डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 25-30 दिन धरि राखल जा सकैत अछि। किसान भाई, एहि तरहे यदि टमाटर के खेती कयल जाए तो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज लेल जा सकैत अछि। किसान भाई, संगे टमाटर में बहुत रास बीमारी सेहो होइत अछि, जकर निगरानी करैत रहबाक चाही। फल बेधक सूरी, ई सूरी कच्चा फल में छेद कऽ कऽ घुसि जाइत अछि आ अंदर पूरा खोखला कऽ दैत अछि। एकर बचाव के लेल रासायनिक दवाई के छिड़काव करैत रहबाक चाही। संगे तम्बाकू की सूरी, ई अहाँ के मादा कीट पात के झुंड में रहैत अछि, 4 से 5 दिन के बाद अंडा सुसा सूरी निकलैत अछि, पात के खा जाइत अछि। एकरा लेल 15 से 20 दिन धरि सूरी जवान होया तो जमीन में गाड़ देबाक चाही। अय के रोकथाम के लेल फेरोमोन ट्रैप लगा कर पकड़ लेबाक चाही, एकरा नष्ट कर देबाक चाही। कीटनाशक दवाई 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करैत रहबाक चाही। अही के संग आजुक कृषि चर्चा संपन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे।

0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, मोतियाबिंद, बचाव व निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा।
2: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
3: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
2: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
3: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
2: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
3: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाए। इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
2: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
3: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीजें बड़ी नजर आती थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
2: इसमें क्या होता है?
3: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर

0: का टिटेनियम निडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं। इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
0: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं उन्हें आंख में अवश्य डालना चाहिए। आंखों को कभी नहीं मलना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए कि आंखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आंख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। प्रमुख कलाकार हैं सुरेश वाडेकर। रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग है भगवान विष्णु द्वारा बंदर रूप दिए जाने से विश्व मोहिनी के स्वयंवर में उपहास का पात्र बने नारद का आक्रोश और क्रोध में भगवान विष्णु को दिया गया श्राप।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

प्रातः 7:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा प्रातः के 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा प्रातः 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा प्रातः 9:05 पर। प्रातः 9:50 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 10:30 पर सुनिएगा भक्ति संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सुनवाएंगे कबीर भजन राग शुद्ध वैराटी में। कलाकार होंगे पंडित जसराज। समय होगा प्रातः 11:00। प्रातः 11:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुनिएगा दोपहर के 12:30 पर। दोपहर 1:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण किया जाएगा। देशभक्ति गीत का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 1:10 पर। कलाकार होंगे मोहम्मद रफी। दोपहर 1:15 पर खतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा आपकी पसंद। दोपहर 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:05 पर सुनिएगा इलाकाई खबरें। रोजगार सूचना का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे दोपहर 2:30 पर। 3:00 दोपहर आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत। कलाकार होंगे सुरेश रावल। इनके स्वर में आज सुनेंगे गुजराती गीत। दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:00 सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला। संध्या के 5:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारण होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। संध्या 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। विद्यापति गीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 6:10 पर। संध्या 6:25 पर सुनेंगे मैथिली संवाद गाम घर के अंतर्गत झरोखा। यह कार्यक्रम आप सुनिएगा संध्या 6:30 पर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। संध्या 6:55 पर सुनिएगा किसान वाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे।

0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोता सबके हमर नमस्कार। आई हम छी अंजनी और हमरा संगे छथि प्रतिभा प्रीति जी। प्रतिभा जी अहूँ के हमर नमस्कार।
0: नमस्कार अंजनी जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी हर दिन करते हैं अंजनी जी एक सुविचार के साथ, तो नीति श्लोक है, कहते हैं विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान गच्छति गौरवम, विद्या लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान को ही सम्मान सहित सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या ही सब जगह पूजी जाती है, विद्या की पूजा हर जगह होती है।
1: बिल्कुल, ये देखियो ना जे संसार जे छे से ज्ञाने पर टिकल अछि।
0: बिल्कुल,
1: जब अपने सब शिक्षित छी तखने तो धैर आब सकल छी, और जब शिक्षित नहीं रहतौ तो एकटा अनहार घर में जना खड़ा कऽ दै छी लोग के, और किछ नहीं सुझाइए तहिना अपना सब रहतौ। और जब एखन देखियो जे अपन जे देश छे, अपन देश के विश्व ल लियो ना, जे विश्व एखन शिक्षित भ रहल अछि तो कतेक विद्वान सब निकल रहल छे, तो ओहिमे सँ कतेक विद्यार्थी कतेक युवा अपन अपन पैर पर खड़ा, और जब नहीं रहता है तो एक अन्हारे घर बुझल जाए।
0: और शिक्षा का मतलब, विद्या का मतलब बस किताबी ज्ञान ही नहीं है अंजनी जी, किसी भी क्षेत्र में यदि आप उसके बारे में, उसके विषय में यदि ज्ञान रखती हैं, आप उसमें जान पा रही हैं कि वो क्या है, जैसे आपने कहा कि अपने पैर पे खड़े होने की बात, तो तकनीकी ज्ञान भी आज के युवा ले रहे हैं, तो या भी कोई भी और भी क्षेत्र हो, मिथिला में बहुत तरह के जो शिल्प कला है उसके विषय में ज्ञान की बात हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र की ज्ञान की बात यदि हम करें, तो वो जहाँ पे है ज्ञान, जहाँ है विद्या, जहाँ है वहाँ उस व्यक्ति की अपने परिवार में, समाज में, देश में और दुनिया में निश्चित रूप से
1: सम्मान
0: मिले, सम्मान मिले। बिल्कुल।
1: और आजुक दिन के इतिहास में की खास से श्रोता सबको
0: देख लेते हैं एक नजर, आज के दिन का इतिहास क्यों है आज का दिन इतिहास के आईने में खास। तो आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का अमर मंत्र के साथ आंदोलन का उद्देश्य बताया, भारत से ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। 8 अगस्त 1899 को अल्बर्ट टी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर को पेटेंट करवाया। 8 अगस्त 1908 में विल्बर राइट ने फ्रांस के ले मांग पास हवाई जहाज का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। वहीं यदि बात करें 8 अगस्त 1915 की, तो प्रसिद्ध भारतीय लेखक और हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार भीष्म साहनी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर रामचंद्र सुधाकर राव का जन्म भी आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1952 को बेंगलोर के कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। भारत की महान शास्त्रीय गायिकाओं में से एक सिद्धेश्वरी देवी का नाम तो हम सभी जानते ही हैं, इनका जन्म भी हुआ था 8 अगस्त 1908 को। और इनके गायन की यदि बात करें अंजनी जी, तो विशेषता

0: यह है कि ठुमरी, ख्याल, दादरा, ठप्पा, कजरी, चेती, होड़ी और भजन भी इनकी प्रमुख जो गायन थी। सिद्धेश्वरी देवी ने अपने ठुमरी गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई थी। वही यदि बात करें 1966 की, तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सिद्धेश्वरी देवी को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी सम्मान भी दिया गया था सरकार के द्वारा, और साथ ही साहित्य कला परिषद सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था।
1: इच्छल आजुक दिन के इतिहास में की अच खास। और देखिए, जो संगीतक अहाँ बात केलों, तो संगीत तो अपना सबके नस नस में छे। और अपना कार्यक्रम में मैथिली सुगम संगीत दे छी, फिल्म संगीत मतलब श्रोता सबके सुनाबे छी, तो कार्यक्रम की सुंदरता और बढ़ जाए।
0: तो हम समझ रहे हैं, आप अपने श्रोताओं तक एक मैथिली सुगम संगीत पहुँचाना चाहती हैं। आइए सुनते हैं एक मैथिली सुगम संगीत।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हम लोग सुन रहे थे।
1: बिल्कुल, और देखिए जे भगवती के गीत एखन नवविवाहिता के जे पावन चल रहा है मधुश्रावणी, ओमे
0: सबसे पहले आराधना भगवती, हाँ, और उसमें मैया का आराधना तो सबसे पहले किया जाता है।
1: और देखिए ना, मैया जे छथिन ना से ममता के देवी छथिन, तें हुनकर आराधना किन विशेष कयल जाय छन। और ई धरती जे टिकल अछि, धरतियो जे छथिन से मते छथिन, अपना सबके जीवन में एकटा अलग स्थान छन भगवती के,
0: निश्चित रूप से।
1: तहिना अपना सबके कार्यक्रम में सेहो बहुत चीज के आवश्यकता होय छै,
0: गीत संगीत से हम आगे और भी आनंदित करवाते रहेंगे फिल्म संगीत से। अभी फिलहाल समय हो चला है हालचाल का, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जानने का, तो अंजनी कुमारी से सुनिए हालचाल।
1: धन्यवाद प्रतिभा जी, अब हमरा से सुनो हालचाल। कुशेश्वर स्थान प्रखंड में निर्माणाधीन सतीघाट राजघाट

मुख्य सड़क पर एखन लोक सब के बहुत समस्या के सामना करे पड़े छन। कारण जे अई मार्ग पर चलनाई मुश्किल भ गेल अछि। ई सड़क हरौली, गोठानी, बरना, पकारी, झजरा, चिगारी, सिमराहा आ बड़गामा समेत आधा दर्जन पंचायत सब के बेस आबादी के आवागमन के जीवन रेखा मानल जात अछि। जनतब दी जे अई रास्ता से लोग समस्तीपुर जिला के बिथान, हसनपुर, रोसरा आ समस्तीपुर धर कम समय में पहुँच जात अछि। समस्या यह जे सड़क खराब भ गेल अछि वर्षा के कारण। हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर गाम में ब्रह्मस्थान में शुक्र दिन भोर में कलश शोभा यात्रा के संग बल्ली बाबा के 9 दिवसीय पूजा के शुभारम्भ भेल। श्रीरामपुर ठकुरबाड़ी से रंग बिरंगक पारंपरिक परिधान सब में सजल 251 गोट कुमारी कन्या सब गाजा बाजा के संग कलश यात्रा निकालल के। पूजा समितिक सदस्य सब बतौलन जे 9 दिन धरि प्रतिदिन भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान आ श्रद्धालु सब के बीच प्रसाद वितरण सेहो कयल जायत। डीएम कौशल कुमार बतौलन जे सब प्रखंड में 28 जुलाई से 2 अगस्त धरि गन्ना खेती प्रोत्साहन के लऽ कऽ विशेष अभियान चलायल गेल छल। गन्ना फसल के मुख्य रोपण मौसम शरदकालीन आ वसंतकालीन के ध्यान में रखैत अभियानक अवधि में विस्तार कयल गेल अछि। आब विस्तारित तिथि 31 अगस्त धरि अछि। घनश्यामपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र सब पर स्तनपान सप्ताहक आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर गोद भराई कार्यक्रमक आयोजन सेहो भेल। नगर पंचायत स्थित केंद्र संख्या 0225 पर शुक्र दिन ICDS परियोजना घनश्यामपुर द्वारा ई कार्यक्रम संपन्न कयल गेल। एकर मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला सब के सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु के पोषण आ जन्म के तुरंत बाद स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक केनाई छल। जीवन अस्पताल के ENT विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद भारती कहलन जे कान में खुजली भेला पर माचिस के तीली, लोहा के पिन व अन्य नुकीला वस्तु से कान नहीं खुजलेबाक चाही। कोनो झोला छाप से कान साफ नहीं करेबाक चाही, किएक त ई अहाँ के बहिर बना सकैत अछि। ओ कहलनि जे एखन कान में फंगस आ बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण श्रवण दोष से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुँच रहल अछि। विदित हो जे जीवन अस्पताल में 20 जुलाई से ENT चिकित्सा सेवा शुरू भ गेल अछि। अस्पतालक निदेशक डॉक्टर RK झा बतौलनि जे ENT विशेषज्ञ प्रत्येक सोम, बुध आ शुक्र के मरीज सभक इलाज करैत अछि। तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा पंचायत सरकार भवन में शुक्र दिन शिविर लगा भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जयपुर के तत्वावधान में जयपुर फूट के सौजन्य से क्षेत्र के चिन्हित दिव्यांग सबके उपयोगी उपकरण टीम द्वारा जांचों उपरांत उपलब्ध करायल गेल। फिजियोथेरेपिस्ट टीम द्वारा जांचों उपरांत हुनक उपयोगिता के देखैत उपकरण उपलब्ध करायल गेल। दिव्यांगजन के बीच व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, रोलेटर, कृत्रिम जूता, श्रवण यंत्र आदि उपकरण वितरण कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा मद से क्रियान्वित योजना सबके सामाजिक अंकेक्षण कयल गेल। एकरा लेल पंचायतवार अंकेक्षण कैलेंडर तैयार कयल गेल अछि। एकर शुरुआत बहादुरपुर देकुली पंचायत से होयत। जानकारी दैत शुक्र के DRP उदय कुमार बतौलनि जे 7 अगस्त से 12 अगस्त धरि बहादुरपुर देकुली में आ 13 अगस्त से 18 अगस्त धरि वसतपुर, बियौनी, अंदामा, डरहार, दिलवारपुर आ हरपट्टी आ 19 अगस्त से 24 अगस्त धरि जलवार, खैरा, खराजपुर, कुशोथर आ मनियारी के में होयत। 3 सितम्बर से 8 सितम्बर धरि मेकाना बिंदा

0: ओझौल पिररी प्रेमजीवर आ रामभद्रपुर के बाद 9 सितंबर से 14 सितंबर धरि सिमरा नेहालपुर तारालाही टीकापट्टी देकुली उगरा आ उगरा महापारा के बाद 16 सितंबर से 21 सितंबर धरि वाजिदपुर में सामाजिक अंकेक्षण के कार्य कैल जात। एखन अपने सब सुन रहल छी हाल चाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: शेष हालचाल विरामक पश्चात जिला में 9-17 अगस्त धरि हर घर तिरंगा अभियान चलायल जात। अभियान के दिस 12 अगस्त के भोर 8 बजे जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालल जात, जाहि में जनप्रतिनिधि के संग डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक, अधिकारी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड आ मेरा युवा भारत के सदस्य शामिल हेता। तिरंगा यात्रा कर्पूरी चौक से आरंभ भ के बेता चौक होइत लहरियासराय टावर स्थित महात्मा गांधी स्मारक पहुँचत। ओतय पुष्पांजलि के बाद लोहिया चौक पर संबोधन के संग यात्रा के समापन हैत। एहिमे सब वीडियो के सेहो 12 अगस्त के भोर 9 बजे अपन अपन प्रखंड में जनप्रतिनिधि आमजन के संग सहभागिता से तिरंगा यात्रा आयोजित करबाक निर्देश डीएम द्वारा देल गेल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली संस्कृत आ मनोविज्ञान विभाग में प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-28 के नव नामांकित छात्र छात्रा के लेल वर्गारंभ आ इंडक्शन कार्यक्रम भेल, जाहि में छात्र सभक नव पाठ्यक्रम, विभागीय शैक्षणिक गतिविधि, परीक्षा प्रणाली, शोध के अवसर आ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परंपरा से अवगत करायल गेल। पीजी मैथिली विभाग में अध्यक्षता करैत प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता कहलनि जे अध्ययनशील छात्र अपन भविष्य के निर्माण कऽ सकैत छथि। छात्र के लक्ष्य के प्रति सजग करैत अनुशासन, नियमित अध्ययन आ शोध परक दृष्टिकोण अपनेबाक चाही। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से जरूरतमंद आ अर्हताधारी पीजी विद्यार्थी सबके बहुत राहत दिलत है। विश्वविद्यालय प्रशासन सुलभ छात्रवृत्ति योजना के तहत सत्र 2019-21 से लक 2023-25 धरि के चयनित 59 गोट विद्यार्थी सबके बैंक खाता में कुल 5,40,000 रुपया के छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित कऽ देलक अछि। वर्ष से लंबित छात्रवृत्ति के राशि मिलना से लाभुक विद्यार्थी सब में खुशी के माहौल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसारे वेद विभाग के 11 गोट छात्र के 1.35 लाख रुपया, दर्शन विभाग के 7 गोट छात्र के 78,750 रुपया, धर्मशास्त्र विभाग के 9 गोट छात्र के 41,250 रुपया आ ज्योतिष विभाग के छात्र के सेहो रुपया भेटल अछि। ई छल हाल चाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा
1: एखन अपने सब सुनै छलहुँ हालचाल, और हालचालक बाद समय भऽ जाइत अछि मौसमक जानकारी। तऽ प्रतिभाजी उपस्थित छथि मौसमक जानकारी लऽ कऽ।
2: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 9 से 13 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में 9 से 11 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अन्य दिनों में भी अनेक स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी अथवा दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
1: तो ई छल मौसमक जानकारी। और अपने सब कार्यक्रम से पहले गप करै छलहुँ पशु पक्षी पर। देखियो जे जखन भोर उठै छी अपना सब पक्षी के चहचहाट से अपन सबके नींद खुलैत अछि।
2: बिल्कुल,
1: किएक तऽ सबसे पहिने जे छै एहि संसार में पशु पक्षी के नींद टूटै छन। और कहबाक तात्पर्य ई अछि जे हम जे जीवन में जी रहल छी ओ कोनो जीवन हुए, पुरनका जीवन हुए कि एखन आधुनिक जीवन हुए, आधुनिको जीवन में जँ पक्षी नहीं छै तऽ अपना सबके एतऽ जीवन नहीं छै।
2: देखिए अंजनी जी, बचपन में आप ही पढ़ी होंगी शायद, हम लोग के समय में ये कविता पढ़ाया जा रहा था कि नहीं हुआ है अभी सवेरा
1: पूरा
2: पूरा की लाली पहचान, तो चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गए किसान। तो किसान तो जग ही जाते थे, लेकिन किसान भी जब जगते थे तो चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही वो अपने खेत की तरफ जाते थे, अपने काम पे लग जाते थे। तो सुबह की शुरुआत हम कह सकते हैं कि पक्षियों के जो आवाज है, उनकी चहचहाहट है, उनके साथ ही कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। और पक्षी तो इस प्रकृति के जो श्रृंगार कह सकते हैं कि वो हैं, लेकिन बहुत ही दुखद विषय यह है कि आजकल बहुत कम मात्रा में पक्षियां देखने को मिल रही हैं।
1: बिल्कुल, देखियो ना जे हम सब एखनो उठै छी छै और पक्षी के संरक्षण जे अपना सामने करै छी ओहि के कारण अपने सब कम पक्षी देख रहल छी। मुदा अहाँ देखियो जे एकटा पक्षी अपन सबके जीवन के अनमोल बनाबैत अछि।
2: बिल्कुल,
1: और प्रकृति के सेहो अनमोल बनाबै छथिन, ओ प्रकृति के रक्षक छथिन, जे पर्यावरण के संतुलन बनाबो में एकटा अहम भूमिका निभाबै छथिन। ओ न केवल हानिकारक कीट के जल और जे मिट्टी छे ओकर रक्षा करे छे, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया के सुचारू रूप से बनाएल रखनाई में अपन योगदान दे छे। आ जखन की हानिकारक कीट से रक्षा तो करे छे और हुनका संरक्षित करवा में सेहो अपन सबके कर्तव्य मनै छथि, जे जब हुनकर रक्षा अपने सब करै छी तखने वो अपन सबके रक्षा कऽ सकै छथिन।
2: बिल्कुल सही कहा अपने अंजनी जी, पक्षी प्रकृति के केवल सुंदर जीव ही नहीं है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का काम वो कर रहे हैं। कीट नियंत्रण की बात आपने की है, बीजों के प्रसार की बात की है, कहीं देखते होइएगा कि किसी छत से लग गए या कोई आसपास में वो पेड़ पौधा था नहीं लेकिन वो अचानक से वो उग चुका है, तो वो कहाँ से आता है? वो बीजों के जो प्रसार है उसमें वो और परागण जैसे प्राकृतिक कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पक्षियों का संरक्षण तो वास्तव में प्रकृति और मानव के जो जीवन है उसका संरक्षण ही है, कह सकते हैं हम।
1: और राष्ट्रीय पक्षी दिवस अपने सब सब तरह के दिवस मनाबे छी, पशु पक्षियों के दिवस मनाबे छी, मुदा अपना सब बिसर जाय छी जे हुनकर सुरक्षा के सेहो संकल्प अपने सब लो लै छी ओय दिन।
2: एक दिन मनाने से तो
1: भी नहीं हो सके।

0: हुनकर जे आवास जे गाछ वृक्ष पर अहाँ देखियौ जे आवास बनाबै छथिन पक्षी सब, ओकरा की करै छियै अपनो सब पेड़ के कटाई कऽ कऽ ओकरा रोकि दै छियै, हुनकर आवास के असुरक्षित कऽ दै छियै, नष्ट कऽ दै छियै।
1: बिल्कुल
0: ई नहि हेबाक चाही। हम अहाँ हम जे जीवन जी रहल छी, मनुष्य के जीवन, एकटा मनुष्य के सब तरहक ज्ञान रहै छै। एखन जे अपने अहाँ कनिकाल पहिले सुविचार में विद्या कहलहुँ, तो जखन अपने सब एतेक ज्ञानी मनुष्य छी तब पक्षी के किया अपने सब सुरक्षित कऽ सकै छी।
1: देखिए हम सभी तो दिनानुदिन अपने

0: अपने अहाँ कनिकाल पहले सुविचारमे विद्या कहलहुँ, तो ओ जखन अपने सब एतेक ज्ञानी मनुष्य छी तऽ पक्षीके केहन अपने सब सुरक्षित कऽ सकै छी?
1: हम सभी तो दिनानुदिन अपने घर को और भी सुंदर बने और भी अच्छा बने, इस तरफ तो कदम बढ़ा रहे हैं। एक मकान है तो दो और हो जाए, एक मंजिला है तो तीन मंजिला हम क्यों नहीं बना ले, तीन मंजिल मकान क्यों ना बना ले। और इसके लिए सुंदर से सुंदर दरवाजे खिड़कियां या फिर फर्नीचर अपने घर में रखते हैं, ये सब लकड़ियों से ही तो प्राप्त होता है। और लकड़ियों के लिए लकड़ी काट के हम वनों की जो कटाई है उसे करके और फिर अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, सुसज्जित करते हैं। किंतु हम सभी ये भूल जाते हैं कि जो हम एक दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मना रहे होते हैं, मनाए होते हैं, उस दिन हम सभी एक पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपनी जो कह सकते हैं कि प्रशंसा के लिए हम ये काम कर लेते हैं। मन में कहीं ना कहीं यही भावना होती है कि लोग जाने कि हमने ये काम किया,
0: लाइक जब भेटैया,
1: बिल्कुल
0: लाइक जब तो बहुत सारा काम करना पड़ते हैं अपना।
1: और हम सभी अपने घर को तो सुंदर बना रहे होते हैं जी, लेकिन जो हमारे पक्षियां हैं, जो प्रकृति की जो सुंदरता है, उनके घर को तो पेड़ ही काट दिए तो फिर उनका फिर अस्तित्व ही कहाँ रह जाएगा।
0: बिल्कुल, तो ये चीज के जो सुरक्षित करब, मतलब पक्षी की जो सुरक्षा हम करब, ओके लिए हमरा सबके घरे से उठा पड़ल, पहले अपने उठा पड़त, तखन समाज के उठावे पड़त, तखन राष्ट्र अपना सबके सहायता करते हैं। तो देखियो खेत और बगीचा में कते लोग की छथिन जे जहरीला रसायन कीटनाशक के प्रयोग कर दे छथिन कीट नहीं लगवा के लिए, लेकिन वैसे की छे अपना सबके जो अनिक कहे तो अपनो सबके खराबी करते
1: है। बिल्कुल,
0: और पक्षी सबके सेहो दूषित भ जाए छे आहार।
1: हाँ, खेत की बात की है आपने, कृषि की बात की है, तो पक्षी कृषि कार्य में भी बहुत ही सहयोग दायक है। वो कैसे कि पक्षी प्राकृतिक रूप से कई कीटों की संख्या को नियंत्रण, आप देखते होइएगा कि खेत में पक्षियों को बैठे हुए वो इस तरह के कीट पतंग को खाते हैं जो हमारे खेत के लिए हानिकारक है, मिट्टी के लिए हानिकारक है, तो वो इस तरह के पक्षियों को यदि खा लेती है तो फिर हमारे खेत में जो है वो उर्वरक क्षमता और भी अधिक बढ़ने से उपज और भी अधिक होता है। बिल्कुल, तो इन सब बातों पे हम सभी को ध्यान देना होगा। पेड़ पौधे लगाने की बात बस कहीं हम सभी बोले नहीं, किताबों में पढ़े नहीं या फिर रेडियो के माध्यम से सुने ही नहीं, इस तरफ अपना
0: हम ये बुझे छे प्रतिभा जी जे आई अपने सब रेडियो के माध्यम से या किताबक माध्यम से जानकारी ले छी, लेकिन पुरान समय में जे लोग छलखिन हुनका कतय से जानकारी भेटै छलन या ओ केना के पक्षी सब के सुरक्षा करै छलखिन, हुनका लेल पानि राखै छलखिन हन कि पक्षी एते कमरो से तो पानि पियत? और देखियो जे जीवन जे छै सबके लेल विशेष छै और जीवन हुनको लेल विशेष छन, और अपने सब हुनकर संरक्षण केना करब ई चीज अपने सबके करब पड़त, और हिनकर संरक्षण करबा के लेल अपना सबके विशेष पेड़ लगेबा के आवश्यकता।
1: और इसके साथ ही जो गर्मी में घरों के ऊपर छत पर या सार्वजनिक कहीं कोई स्थान ऐसा है वहाँ जल से भरे पात्र रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और पक्षियों के जो घोंसले हैं उन्हें नष्ट होने से बचानी चाहिए। और इसके साथ ही पक्षियों का आवास घोंसला की रक्षा करते हुए प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण जो है अंजनी जी उसे कम करना चाहिए। देखिए ना, अनाज ही नहीं, कहीं दाना ही नहीं मिलेगा, कहीं कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग कर देते हैं, कीट ही मर जाते हैं खेत से, तो फिर ये पक्षी जो अपना आहार जो बनाती है वो जो बनाते हैं तो वो फिर कहाँ से उन्हें मिलेगा? उनके खाने पीने की व्यवस्था यदि हम सभी अपने ही घर में, देखिए ना, एक छोटा सा पात्र लेके उसमें थोड़ा सा अनाज हम यदि अपने घर के छत पे रख देते हैं, एक जलपात्र में थोड़ा सा पानी भर के रख देते हैं, तो इस तरह से भी हम ये पक्षियों की सेवा कह सकते हैं कि कर सकते हैं।
0: हाँ हाँ, और देखियो जे कोयल के कूक, तोता मैना के इंसानक आवाज निकालना, ये सब जो है से प्रकृति के देन, और प्रकृति तखन सुरक्षित रहत जखने अपन सब पक्षी के सुरक्षित राखब। जैव विविधता से लऽ कऽ जल स्रोत, कृषि, मानव जीवन आ मौसम चक्र में हिनकर विशेष योगदान है।
1: इसीलिए पक्षी बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा।
0: अपने सब एक ठाम से दोसर ठाम जाय ले ट्रेनक सुविधा ले छी, हवाई जहाजक सुविधा ले छी, मुदा की पक्षी के छन एकर जरूरत
1: कोई आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी चले जाते हैं अपने पंखों के माध्यम से, पंखों से उड़ान भर के वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इनमें ये बहुत ही विशेष खासियत है,
0: विशेषता है। श्रोता सबके सेहो एक ठाम से दोसर ठाम जेबाक लेल
1: संगीत के माध्यम से। बिल्कुल।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: और जखन ई सब रहत हवा कखन एतै, हवा तखन एतै जखन अपने सब हरियाली पर विशेष ध्यान देबे। एकरा लेल अपना सबके पर्यावरण के संतुलित सेहो करय पड़त, और जखने पर्यावरण संतुलित भ जेतै त पक्षी के संरक्षण अपने आप भ जेतै
1: निश्चित तौर पर। और ये चीज एक व्यक्ति से संभव नहीं है जी, इसके लिए जन भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। आप एक पेड़, दो पेड़, पांच पेड़ लगा ही लीजिएगा तो इससे बहुत अधिक बदलाव होने वाली नहीं है, लेकिन यदि हम एक एक पेड़ ही हर एक व्यक्ति लगाए, हर एक परिवार से एक पेड़ लगे। हम सभी तो बातचीत करते हैं ना कि अपने बच्चों की जो जन्मदिवस है या फिर आपकी विवाह का सालगिरह है, तो इस सब अवसर पे आप, महत्वपूर्ण अवसर ये हुआ, तो इन सब अवसरों पे आप लगा सकते हैं एक एक पेड़ पौधे को। और वर्ष में यदि आप अपने घर से दो चार पेड़ भी लगा लेते हैं तो एक अच्छा आंकड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल, देखियो ना एखन जुड़ शीतल के पावन अवैत अच्छे, जब गाछ के जुड़वा जाए छथिन लोग, तो जखन गाछ रहत तखने ना जुड़वा जाएब, न रहत न जुड़ाएब, मुदा ई सब जे चलि आयल छलै अपना सबके संस्कार में, अपना सबके समाज में ही सब चीज चल आयल छै। एखनो अहां जाके कनिक दूर, अगर 10 किलोमीटर दूर जाब, गाम घर में जाब, तो एखनो ऐ सब चीज के विशेष महत्व अछि। किया तो ई कोशिश कयल जायत अछि, एकटा लोक से नै समाज से ई कोशिश कयल जायत अछि जे सब सुखी रहे ई समाज में। और जखन सब सुखी रहे समाज में तो एक लेल तो अपना सबके कोशिश करय पड़तै।
1: बिल्कुल, और अपने कहा समाज की बात, तो समाज एक व्यक्ति से नहीं है, एक परिवार से नहीं है, सबको मिलके है। तो जब जन कोशिश होगी, प्रयास हम सभी मिलके करेंगे, तो निश्चित तौर पे सामाजिक परिवर्तन संभव है। और चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो या पक्षी के संरक्षण और संवर्धन की बात हो या फिर साफ सफाई की ही बात क्यों ना ले लें। देखिए ना, आप देखते होइएगा अपने गांव समाज में, अपने मोहल्ले में, कि बहुत सारे लोग कचरे को अपने घर के साफ करने के बाद सड़क पे ही फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, इतने महान होते हैं कि अपने घर के बालकनी से पॉलीथीन में भर के कचरे को सड़क पे ही फेंक देते हैं। नीचे उतरने का कष्ट भी नहीं वो करते हैं। या फिर ये देखते होइएगा सड़क किनारे या कहीं और भी किसी सार्वजनिक स्थल पर भी कोई नल यदि वहाँ पे खराब हो चुका है, उससे पानी अनवरत बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, किसी की ध्यान उस तरफ नहीं जा रही है, और वो बंद किया जाए या फिर ठीक करवाया जाए उस तरफ ध्यान आकर्षित करने की। तो हम जहाँ पे हैं, हम जहाँ रह रहे होते हैं, हम जिस संस्था में काम कर रहे होते हैं या फिर जिस सड़क पे हम चल रहे होते हैं, तो अपने घर के अलावे हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है कि हम उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। और ये एक व्यक्ति से संभव नहीं है, हमने पहले ही कहा कि बदलाव तभी हो सकता है जब ये पूरे समाज की नजर उधर जाए, जन प्रतिनिधि जो है, जन भागीदारी हो इसमें, तभी हो सकती है।
0: और बदलाव आने के लिए अपना में परिवर्तन पहले आवश्यक छे। जब अपना में अहाँ परिवर्तन नहीं आनबे, अगर अहाँ में परिवर्तन छे तो आगू वाला स्वतः परिवर्तित हो जेते। और जखने तो अपना सब कहे छी, कहलौं है जे जन कोशिश के माध्यम से अपने सब बदलाव आन सके छी, और ऐ के लेल अपना सब के आगू बढ़ पड़त। दोसर बात की छे जे बदलाव जे छे से शिक्षा, शिक्षित हेबाक लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। जब अपने सब शिक्षित भ रहल छी और बदलाव चाहे छी तो एकरा अपने सब जन प्रतिनिधि के जोड़ सकै छी। और देखियो ने कहल गेल अछि एकटा शिक्षक जे छथिन, एकटा गुरु जे छथिन, से सहायक होइ छथिन अपना सब के ज्ञान बाँटय में। तो तहिना जेना अहाँ कचरा के गप केलहुँ, जे किछु लोग डांटै छथिन एकदम जोर से, आ किछु लोग डांटे छथिन एकदम सौम्यता से, अपन संस्कार में लिप्त भ क, तो वह भले किछु लोग कचरा फेंके छथिन ओहिना, किछु लोग फेंके छथिन पन्नी में, मतलब पोलोथीन में। तब एक तो प्लास्टिक
1: बात
0: प्लास्टिक
1: वही है कि गंदगी फैलाने की ही बात है,
0: और वह लोग नाक झाइपो के चलता। हां, एक गौर कर
1: अपने घर की सफाई और सड़क पे कचरा का जो कह सकते हैं कि अंबार लगना। और अंजलि जी कहते हैं कि समय परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे ही समाज की सोच, जीवन शैली की बात करें या मूल्य, फिर तकनीकी की बात करें या सामाजिक व्यवस्था की बात करें, उसमें परिवर्तन आता है। पर परिवर्तन जो है समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन केवल सरकारों या संस्थाओं का प्रयास से नहीं संभव है, उनके प्रयास से, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और सामाजिक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयासों से भी यह संभव होगा। हम ये सोचते हैं ना कि कचरा तो हम फेंक चुके हैं, वो नगर निगम वाले आएंगे गाड़ी लेके, कचरा उठाने वाले गाड़ी लेके आएंगे, वो उठा के ले जाएंगे, तो वो तो जब आएंगे दो

0: दिन बाद हो सकता है आ सकते हैं, 4 दिन बाद आ सकते हैं, या फिर कभी समय और भी लग जाता है।
1: गीतो बड़ सुंदर होइ छे प्रतिभाजी,
0: और तब तक हम सभी जो है वो झेल रहे होते हैं। तो इन सब चीजों में बदलाव लाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, और कार्यक्रम में
1: नहीं नहीं मतलब हमरा कहे के मतलब जे कचरा ले ले आबे छथिन जे भी गाड़ी अबैय तो ओमे गीतो बजित रहे छे, अहां के बजबै छे त गीत गाबे
0: आप सुन लेते हैं। हम सभी क्या करते हैं ना, सुन लेते हैं वो आया बजा के तो इस तरह से इस बात पे हम सभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो प्रेरक उदाहरण यदि हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इन सब बातों को ध्यान दे तो सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, या फिर नगर निगम के भरोसे नहीं रह सकते
1: नहीं
0: हैं।
1: रह
0: हम सभी अपनी भागीदारी यदि दें, एक एक परिवार से यदि सहयोग दिया जाए तो बहुत क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और देखियो जी अपना सबके कार्यक्रम में समय अपना सबके सीमित है, सीमित समय में अपना सबके श्रोता सबके समक्ष फिल्म संगीतो प्रस्तुत
0: बात करने के लिए बहुत अधिक है, पर समय हम सबके पास कम ही होता है। तो चलते चलते सुन लेते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: इहक संग अपन सबके समय समाप्त होत इह समय में काल फिर अपने सब उपस्थित है अही के संग
1: तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
0: और अंजनी के दियो विदा
1: नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
4: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
5: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
6: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
7: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
8: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
9: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
10: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
11: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
10: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
9: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित। और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्रीमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट डिग्री ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
6: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों

0: को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: We have seen the comments.
2: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: Regulate the flow of foreign funds.
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
2: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

0: ने प्रदर्शनकारी और चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में पहाड़ी लोगों के लिए सीट आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

0: अयोध्या से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केवंझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजैक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा, स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार पल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोक सत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर

0: घंटे के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक।

Este. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन अदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदनवानियों पर जाहिर करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। सीनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को

0: अजमात और सजावटी सामान तैयार करके हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दिया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है।
1: रियासत के सभी अजला में रेल से मुतालिक तंबीह पिछले 7 दिनों से जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाना इस बात का इशारा है कि इक्का दुक्का मकामात पर बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कासरगोड, कन्नूर, वियानाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापोजा और पत्तनम तिट्टा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बकिया अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। केरलम और लक्षद्वीप में 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। रियासत के सभी

0: जिला में आधी रात से औसत दर्जे की बारिश जारी है। थिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ओडिशा में खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है, जिसके बायस रियासत भर में वसी पैमाने पर बारिश हो सकती है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के बायस बारिश से मुतासर इलाकों में सैलाब के अंदेशे में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र मयूरभंज जिले में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने के इम्कान के साथ ही ओडिशा में शदीद बारिश जारी रहने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बालासोर के बस्ता इलाके में जलाका दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब ज़िले में सैलाब का ख़तरा बढ़ गया है। हुक्काम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
3: बैडमिंटन में कोरिया मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज सुबह आसन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज अपने मुतालिका क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। अश्मिता ने जापान के पहला दर्जे के आलमी नंबर 22 खिलाड़ी हेना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया, जबकि रक्षिता ने तीसरे सीट की अपनी हमवतन खिलाड़ी तन्वी शर्मा को 18-21, 21-19, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ताशकंद में जारी एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने मुल्क के लिए शानदार कारकर्दगी का आगाज करते हुए खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम के साथ कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर यह तमगा जीता है। इसी जुमरे में परश्मिता गोगोई ने चौथा मकाम हासिल किया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म आज IIT दिल्ली की 17वीं तकसीम इस्नात तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। जनाब मोदी डिग्रियां अता करने के साथ होनहार तलबा को इदारे के सबसे बावकार इजादात से नवाजेंगे और खिताब भी करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में रॉस एवेन्यू कोर्ट में CBI की तरफ से 94 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें CBI ने दावा किया है कि पेपर लीक की साजिश कई माह कबल रखी गई थी और माहरीन ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवालात याद कर लिए थे। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने मक्का मुकरमा में एक तारीखी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी एक पर हमला तीनों मुल्क पर हमला तस्वीर किया जाएगा। रोजनामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर दी है कि ईरान से बातचीत जारी है और जंग जल्द खत्म हो जाएगी।
3: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे PCI ने वजाहत की है कि UPI लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून की तरफ से मुजवजा FCRA बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेब

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
4: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र और मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री इस दौरान जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे
5: मुख्यमंत्री सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखरुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आज जिले को कई सौगात देंगे वह 76 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 30 MTPD क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र परियोजना का शुभारंभ करेंगे साथ ही मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन भी करेंगे स्थानीय लाभुकों को ऑक्सीजनरेटेड बैग के माध्यम से स्पॉन का वितरण तथा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री पहले पुनौरा धाम पहुंचेंगे जहां मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिसर में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और डेयरी मत्स्य और पशुपालन संसाधन मंत्री नंद किशोर राम समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 400 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों का पलायन रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं श्री चौधरी ने कहा कि 211 नव स्थापित डिग्री कॉलेजों में

0: 10 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने मठ और मंदिरों से स्कूलों को गोद लेने या नए स्कूल खोलने का आग्रह भी किया।
1: अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलूंगा सर, क्योंकि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए। मैं तो यह आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर हैं तय कीजिए, एक एक स्कूल एक एक कॉलेज सब आपको गोद लेने का काम किया, और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे।
0: उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि नवगठित 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापकों को अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापक सेवा अवधि के दौरान यदि पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें इसे छोड़ना होगा। विभाग का मानना है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से शिक्षण कार्य करना होगा, इसलिए शोध और नियमित सेवा साथ साथ संभव नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि आशा घर की स्थापना से आशा कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। इस बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को आशा घर शुरू करने के निर्देश भेज दिए हैं। इस योजना के तहत हर जिले में जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में आशा घर के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बने रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
2: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में नए खनिज उत्पादों के लिए ब्लॉक चिन्हित कर खनन की तैयारी की जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया में लौह अयस्क के रूप में दुर्लभ खनिज मैग्नेटाइट के भंडार का पता चला है। वहीं रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय टीम 17 अगस्त को पटना आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा में बिहार 7,30,00,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर का स्थान है। देश भर में इस मिशन के तहत कुल 25,00,000 ओपीडी पंजीकरण हुए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरणवाल ने कहा कि ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश भर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में आवास के साथ बाजार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। श्री सिंह ने पाटलिपुत्र टाउनशिप से जुड़ी अंतर विभागीय परामर्श बैठक में निर्देश दिया कि आवासन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि टाउनशिप में रोजगार, आवास, वाणिज्यिक गतिविधियां, मनोरंजन और संस्थागत सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश में नियोजित शहरों का विकास संभव हो सकेगा। प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस संबंध में सूचना देने के लिए सुधा दूध के पैकेट और बिजली बिल की प्रतियों पर हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साइबर अपराध से जुड़ी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दूध के पैकेट और बिजली बिल पर हेल्पलाइन नंबर 1930 अंकित करने के निर्देश दिए हैं। श्री अमृत ने कहा कि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने केंद्र सरकार से वैशाली जिले में हाजीपुर के पासवान चौक से बिदुपुर तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की मांग की है। नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान श्री शैलेंद्र ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पीपा पुल के निर्माण की मांग भी रखी है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, कटिहार, बांका और जमुई समेत राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 8 अगस्त को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पुणे में 12 अगस्त से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 17 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने बताया कि राजगीर खेल अकादमी में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक गेविन फरेरा के मार्गदर्शन में टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि आज टीम पुणे के लिए रवाना होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग के कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से लोगों की सभी समस्याओं का समाधान अब एक ही जगह पर हो सकेगा। रोहतास जिले के मुरादाबाद में कल देर रात समरसता का संदेश लेकर पहुंची संत रविदास जयंती की कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उल्लासपूर्ण माहौल में कलश को संत रविदास मंदिर में स्थापित किया गया है। मधुबनी जिले के जयनगर स्थित एसएसबी की 48वीं वाहिनी मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ओवर ब्रिज तक देशभक्ति मैराथन का आयोजन किया गया। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास बंगाली टोला से पुलिस ने छापेमारी कर 12

0: ग्राम मादक पदार्थ एस्मैक जब्त किया है। मौके से दो नेपाली तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में साइबर अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी, पटना, नवादा और नालंदा देश के टॉप 10 हॉट स्पॉट में। दैनिक जागरण ने सड़क परियोजनाओं पर लिखा है, नाबार्ड से उधार लेकर सड़क और पुल बनाएगी सरकार। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले को तरजीह देते हुए लिखा है, एक्सपर्ट ने पेपर के दो सेट बनाकर बेचे थे, चार्जशीट दाखिल। प्रभात खबर ने ईओयू की कार्रवाई पर लिखा है, चार साल की नौकरी में सहरसा के डीपीओ के पास सीवान में भव्य मकान, 40 लाख का जेवर, छपरा में पत्नी के नाम 6 बीघा जमीन। आज अखबार लिखता है, बेटा से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 25 टन मखाना। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार की संस्कृति, सभ्यता और लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: Akashwadi at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: ही की तारीख में 1915 में रावलपिंडी में हुई थी और इनका ताल्लुक एक ऐसे इल्मी और फनकार घराने से था जहां अदब और फन सांस लेते थे। उनके बड़े भाई बलराज साहनी हिंदुस्तानी सिनेमा के एक लेजेंडरी अदाकार गुजरे हैं। भीष्म जी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में एमए किया और बाद में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जबानों पर ये इकसा अबूर रखते थे। उन्होंने तवील अरसे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमात अंजाम दी और चंद साल मॉस्को में गुजार कर रूसी अदब के शाहकारों को हिंदी जामा भी पहनाया। वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और ताउम्र दबी कुचली आवाम की आवाज बने रहे। भीष्म सैनी की तहरीरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी समाजी हकीकत पसंदी थी। 1947 में मुल्क की तकसीम का जो दर्द उन्होंने खुद झेला उसे उन्होंने अपने शाहकार नॉवेल तमस में इस तरह समोया कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाती है। ये नॉवेल सियासत की शतरंज और मासूम इंसानों के कर्ब की एक सच्ची और तारीखी दस्तावेज है जिस पर यादगार फिल्म और टीवी सीरियल भी बना। नॉवेलों के अलावा उनके अफसाने भी हैं सामीन जो बेहद मकबूल हुए और उनकी मशहूर जमाना कहानी चीफ की दावत मिडिल क्लास मुआशरे के अखलाकी गिरावट और एक बूढ़ी माँ के बेलौस मोहब्बत की आफाकी तस्वीर पेश करती है। उनका ड्रामा कबीरा खड़ा बाजार में आज भी थिएटर की दुनिया में एक मिशाले राह है। अदब और समाज के लिए उनकी इन बेलौस खिदमत के एतराफ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण जैसे बावकार सिविल एजाज से नवाजा और उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। जुलाई 2003 में 11 तारीख को 87 वर्ष की उम्र में ये दरख्शां सितारा हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया, लेकिन उनका पैगाम जो कि अमन मोहब्बत और इंसान दोस्ती का पैगाम था आज भी जिंदा है। आई सामीन, इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम पेश किए दे रहे हैं ये उर्दू फीचर खुदा बख्श लाइब्रेरी मखतूत आतिक इल्मी नुस्खों और नायाब किताबों का ज़खीरा।
1: खुदा बख्श लाइब्रेरी या जैसा कि इसके बानी है नहायत आजजी के साथ पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम दिया था, ये दुनिया में इस्लामी अदब का एक बेहतरीन खजाना है।
2: ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए पटना में कायम किया गया है।
3: पटना वो शहर है जो 2600 वर्षों से जमाने के तमाशे देखता आया है।
4: पटना रहम दिल बादशाह अशोक का शहर रहा।
1: पटना उसके बाहिमत दादा चंद्रगुप्त मौर्य का शहर रहा।
2: पटना मशहूर सयाह मेगास्थनीस का शहर रहा है जिसने यहाँ अपनी जिंदगी के 850 साल बसर किए
3: और ईसा की पैदाइश से 300 साल कबल एक हिंदुस्तानी शहर की जिंदगी की जीती जागती तस्वीर बनाकर अहले यूरोप के लिए छोड़ा गया।
4: जी हाँ, इसी शहर के गलियों में लोगों ने महात्मा बुद्ध को नजात दिलाने वाली दुनिया की तलाश में घूमते देखा।
1: इस तरह इस लाइब्रेरी को सामाजिक, सियासी और रूहानी बहुत ही अच्छा माहौल मिला।
2: खुद लाइब्रेरी भी अपने आप में कुछ कम अहम नहीं है।
3: इसमें गुजरे हुए आलिमों और गुजरे हुए बादशाहों की यादें महफूज हैं।
4: जो लोग कदीम जमाने के कदरों से वाकिफ होना चाहते हैं ये लाइब्रेरी उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए मौजूद है।
1: नायाब किताबों की इस लाइब्रेरी की तारीख भी कम दिलचस्प नहीं है।
2: बिहार के शुमाल में एक शरीफ मुसलमान मोहम्मद बख्श रहते थे।
3: मोहम्मद बख्श आलिम थे, शायर थे और अपनी फुर्सत के औकात में मशरिकी अदब की किताबें जमा करते थे।
4: इंतकाल के वक्त वो अपने बेटे और लाइब्रेरी के बानी खुदा बख्श के लिए 1400 किताबें छोड़ गए।
1: ज़ईफुल उम्र मोहम्मद बख्श ने इंतकाल के वक्त जो आखिरी ख्वाहिश जाहिर की
2: वो ये थी, इधर नहीं हो बल्कि अगर हो सके तो पटना शहर ही एक बड़ी लाइब्रेरी का
3: और ये कुतुबखाना मशरिकी मालूमात

0: और 1539 से ज्यादा पुरानी नहीं है।
1: 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के मौका पर ये तारीखी किताब शाह जॉर्ज पंजुम के सामने पेश की गई थी।
2: आने वाले जमाने के लिए जॉर्ज पंजुम के दस्तखत इस वाकया की शहादत दे रहे हैं। यहाँ शाहनामा की एक और नकल भी है। ये नकल मस्कुरा नकल से ज्यादा पुरानी और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है।
0: शाहनामा के बाद एक ऐसे मुसन्निफ की किताब देखिए जो फिरदौसी के बहुत बाद गुजरे हैं।
1: ये मशहूर सूफी दरवेश और शायर मौलाना अब्दुल रहमान जानी हैं।
0: ये लीजिए, ये मसनवी यूसुफ जुलैखा की एक नकल है।
1: यूसुफ जुलैखा की दास्तान हजरत यूसुफ और हाकिम मिस्र की बीवी के दरमियान इश्क की दास्तान है।
2: मशहूर मुसन्निफ मीर अली हरबी ने यह किताब 1523 में लिखी थी
0: और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे शहंशाह जहांगीर को तोहफतन पेश किया। अब जरा इस छोटी सी मगर नायक

0: शायर के खुददार बेटे ने सुल्तान का इनाम लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।
1: इस लाइब्रेरी में शाहनामा की ये कापी 10,000 अशआर के बाद भी अधूरी है।

0: खाने मोहम्मदिया लाइब्रेरी के नाम से छपरा में कायम किया था।
1: 1600 मखतूतात जमा किए थे। मोहम्मद बख्श खान छपरा में वकालत करते थे।
2: फिर छपरा तर्क करके पटना आकर चौहत्ता में ही रहने लगे।
0: उनकी जिंदगी में भी एक अहम वाकया पेश आया। किताबों की चोरी और बदनीयती हर दौर में रही है।
1: जी हाँ, और किताबों की चोरी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं।
2: ये क्या बात हुई? अरे भाई, किताबों की चोरी पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो क्या जाहिल करेंगे?
0: मोहम्मद बख्श की जिंदगी का एक और अहम वाकया पेश है।
3: खुदा बख्श के खानदान में दूसरे के जज्बात का किस कदर एहतराम था, इसकी एक अहम मिसाल हमारे सामने है।
1: खुदा बख्श साहब के साजिश सलाउद्दीन खुदा बख्श ने इस वाकया को तहरीर किया है कि
2: उनके दादा मोहम्मद बख्श ने बचपन में एक ब्राह्मण खातून का दूध पिया था और उनकी बहुत इज्जत व एहतराम किया करते थे।
0: उन्हें उस दूध पिलाई माँ के जज्बात का इस कदर एहतराम था कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी गाय का गोश्त नहीं खाया।
3: हद तो यह है कि खुदा बख्श ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी गाय के गोश्त को हाथ नहीं लगाया।
1: जी हाँ, और यह सिलसिला हनूज बरकरार है।
2: इन किताबों का मालिक एक गरीब आदमी की मौत मरा।
0: उसने अपनी सारी दौलत इन किताबों के हासिल करने और उनकी हिफाजत के लिए एक खूबसूरत इमारत की तामीर में खर्च कर दी।
3: इस हसीन इमारत की तामीर पर उस वक्त 80,000 रुपए खर्च हुए थे।
1: 1891 में इस लाइब्रेरी के कायम करने वाले ने अपने निजी कुतुबखाना को अवाम के नजर कर दिया
2: और सूबाई हुकूमत को इसका इंतजाम कार मुंतखब किया।
0: और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की कोशिशों से 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद के जरिया तस्कील करदा एक आला अख्तियारी बोर्ड ने इसका इंतजाम और देखरेख अपने हाथ में ले लिया।
3: आखिरकार 1969 के दिसंबर में पार्लियामेंट ने खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मंजूर करके लाइब्रेरी के एक कौमी अहमियत का अदारा करार दे दिया।
1: खुदा बख्श खान की पैदाइश बिहार के शहर छपरा में 2 अगस्त 1842 ईस्वी को हुई थी।
2: उन्हें 1883 में खान बहादुर का खिताब मिला था
0: और 1903 ईस्वी में CIE का भी खिताब मिला।
3: 66वीं यौमे पैदाइश के दूसरे दिन यानी 3 अगस्त 1908 को खुदा बख्श पैदा करने वाले से जा मिले।
1: उन्हें लाइब्रेरी के अहाते में ही एक छोटे से खुले मुकाम पर कब्र में दफन कर दिया।
2: उनके बेटे सलाउद्दीन के बयान के मुताबिक यहाँ वो अपने सफर हयात के खात्मा पर इस्लाम के बड़े बड़े मुसन्निफीन के यादगारों के गहवारे आराम की नींद सो रहे हैं।
0: एक तरफ से ये लाइब्रेरी इल्म हासिल करने वालों की प्यास बुझाती है तो दूसरी तरफ यहाँ काम करने वाले 54 कारकुनों के खानदानों के सैकड़ों एरकान की परवरिश भी करती है।
1: है ना ये एक अजीम इंसान का अजीब और गरीब कारनामा।
4: हम इन अजीम लोगों को करार अकीदत पेश करते हैं।
5: मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं।
6: सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे ये उर्दू फीचर जिसका उनवान था खुदा बख्श लाइब्रेरी मखतूता कलमी नुस्खों और नायाब किताबों का जखीरा। तहरीर थी नुमान हाशमी की और पेशकश कमाल जाफरी की। आई सामीन, और इसके बाद हमारी अगली पेशकश बसम मौसीकी के तहत जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गजल आपकी समातों के हवाले की दे रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं।

सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम हुआ। कल फिर हमारी मुलाकात होगी इस वादे और इरादे के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन ए

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकन खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
8: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
9: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
10: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना हमें लिया है फिल्म CID से। आवाज है शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए राम शंकर की आवाज में। ध्रुव कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जसपाल मुनी ने। फिल्म है यारो सब दुआ करो।

अगला गाना सुनिए कुमार सानू की आवाज में। इन दिवट के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म है तमन्ना। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें मालूम है तुम्हें हम पसंद करते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने, आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास ने। फिल्म है संगीत।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाज़ है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए फिल्म लुटेरा का गाना। आवाज़ है शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

फिल्म संगीत का ये सफर यहीं खत्म होता है। आप फिल्म संगीत का फिर आनंद ले पाएंगे अब से ठीक एक घंटे बाद यानी 11:30 पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति गीत पुरुषोत्तम दास जरोड़ा की आवाज में।

अभी आप भक्ति संगीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारी प्रथम सभा जारी है, कृपया अगले कार्यक्रम की कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम 231.5 मीटर पर। हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों को आज आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज के स्वर में कबीर भजन राग शुद्ध भरारी में।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित जसराज के स्वर में कबीर भजन राग शुद्ध भरारी में। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का, और सबसे पहले सुनते हैं फिल्म सलामी से लिए गए इस गीत को कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म माँ से लिए गए गीत को, आवाज थी पूर्णिमा की। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म 100 डेज से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मोहरा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आई मिलन की रात से। आई मिलन की रात का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं और इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने।

फिल्म बलमा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी आशा भोसले और कुमार शानू की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म संग्राम से, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

तो श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए, अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का। तो आइए, आप मिलते हैं कार्यक्रम नारी संसार में आपकी रेडियो सखी रजनी से।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं। और हाँ बहनों, कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बनाने के लिए इसे हमने कुछ नए पुराने नगमों से पिरोया है। कार्यक्रम के अंत में खास टिप्स में होगी हमारी खास बातचीत, आपके लिए कुछ जानकारी की बातें। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और अपने मनपसंद कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। आज की बदलती दुनिया में एक ओर महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना समय की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर डिजिटल युग में बच्चों का सुरक्षित और संतुलित भविष्य भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहनों, इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे।

लेकिन आइए हम बात करें हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर, जो कल से हम लोग मना रहे हैं, यानी कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। बहनों, हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और भी मजबूत करना है। जब घर पर तिरंगा लहराता है तो यह उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तिरंगे के तीनों रंग हमें प्रेरणा देते हैं, केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शांति का, और हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र।

ने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तिरंगे के तीनों रंग हमें प्रेरणा देते हैं। केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सत्य और शांति का, और हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का उद्देश्य का संदेश भी देता है। घर तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय ध्वज के नियमों का पालन करें और अपने अच्छे कार्यों के जरिए देश का गौरव बढ़ाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ इस विषय पर मैं अपनी बातचीत विराम देती हूँ और सुनते हैं देशभक्ति से भरा हुआ ये प्यारा सा गाना।

0: नो, अभी आप लता की आवाज में ये देशभक्ति से भरा हुआ ये गाना सुन रही थी। आइए अब वार्ता सुने हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर हमारी रेडियो सखी श्वेता से।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अभियान की जो देशभक्ति की भावना को हर घर तक पहुंचाने का संदेश देता है, हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा केवल रंगों से बना एक झंडा नहीं, बल्कि यह हमारे देश की एकता, अखंडता, शौर्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हर भारतीय के मन में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जाग उठती है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और जिम्मेदारियों में भी दिखाई देनी चाहिए। हम अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसके गौरव को बनाए रखें। तिरंगा हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, इसलिए इसे फहराते समय ध्वज से जुड़े निर्धारित नियमों और सम्मान की भावना का ध्यान रखना चाहिए। तिरंगे को स्वच्छ और सम्मानजनक स्थिति में रखना, अभियान के बाद उसे उचित तरीके से संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगा हमें भारतीय होने की एक पहचान देता है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस अभियान में बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग

0: हर कोई अपनी भागीदारी निभा सकता है। आप अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं, परिवार और आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले वीरों को याद करते हैं। तो श्रोताओं, आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल अपने घर पर तिरंगा ना फहराएं, बल्कि अपने मन में भी देश प्रेम, जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा का तिरंगा लहराएं। हम ये संकल्प लें कि अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो श्रोताओं, इस बार जब आपके घर की छत पर तिरंगा लहराए तो उसे देखकर केवल गर्व ही नहीं, बल्कि ये भी कहें कि देश हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। आइए पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और स्वतंत्रता दिवस को देशभक्ति के उत्सव के रूप में मनाएं। इसी कामना के साथ दीजिए अनुमति, श्वेता को नमस्कार।
1: बहनों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर हमारी रेडियो सखी श्वेता से। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के विषय पर। कहा जाता है कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल उनका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार और समाज की दिशा भी बदल जाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाना और जरूरत पड़ने पर परिवार की सहारा बनने की क्षमता भी है। आज समय तेजी से बदल रहा है। पहले महिलाओं के लिए रोजगार सीमित अवसर थे, लेकिन अब शिक्षा, तकनीक और सरकारी योजनाओं के कारण नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आज महिलाएं खेती, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पापड़ अचार निर्माण, ऑनलाइन व्यवसाय या हस्तशिल्पी जैसे अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, अपना कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। छोटे छोटे समूह बनाकर महिलाएं बचत करती हैं, बैंक से ऋण लेती हैं और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करती हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। वह अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध कर सकती है, अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। इतना तो आत्मविश्वास आ ही जाता है जब वो आत्मनिर्भर बनती हैं। आज डिजिटल तकनीकी ने भी महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से वे अपनी उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकती हैं और ग्राहकों तक आसानी से पहुंच भी सकती हैं। घर बैठे भी छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, बस हुनर होनी चाहिए और करने की लगन होनी चाहिए। कई बार परिवार का सहयोग नहीं मिलना, जानकारी का अभाव होना या पूंजी की कमी आड़े आती है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि महिलाएं अपने हुनर को पहचानें, वो क्या कर सकती हैं, क्या क्या अपने लिए कर सकती हैं, अपने परिवार की सहायता के लिए कर सकती हैं। पहले अपने अंदर टटोलें, फिर वो अपने गुणों को बाहर लाए। बहनों, हर महिला में कुछ न कुछ विशेष क्षमता अवश्य होती है, आवश्यकता है केवल सही दिशा और सही निर्णय लेने की। यदि कोई महिला को स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है तो वह टिफिन सेवा शुरू कर सकती है, अपना खुद का व्यवसाय, खुद का होटल खोल सकती हैं, सिलाई आती है तो बुटीक या सिलाई केंद्र चला सकती हैं, अच्छी कलाकारी आती है तो हस्त निर्मित वस्तुएं बनाकर बेच सकती हैं, जिसका विदेशों में भी बड़ी डिमांड है। पढ़ाई अच्छी है तो बच्चों को घर पर पढ़ाकर भी सम्मानजनक आय अर्जित की जा सकती है। परिवार की भी जिम्मेदारी।

है कि वह महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और स्वरोजगार से जुड़े अनेक योजनाएं का जानकारी मिले उन्हें। और बहनों, इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाया जा सकता है। प्रिय बहनों, याद रखिए, आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है। आप अचानक बहुत सारे मिलियनेयर नहीं बन जाइएगा। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी सी निर्णय लिया जा सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, यह हर महिला को समझ में आनी चाहिए। और छोटे छोटे कदम उठाकर ही महान कदम उठाए जा सकते हैं। ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किया गया हर कार्य सम्मान दिलाता है। आइए हम यह संकल्प लें कि अपने हुनर को पहचानेंगे, उसे निखारेंगे और आवश्यकता पड़ने पर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही आत्मविश्वासी परिवार और मजबूत समाज की आधारशिला होती हैं। इसी संदेश के साथ इस विषय पर अपनी बातचीत को विराम देते हुए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर। सुनते हैं कार्यक्रम बगीचा में पिरोया हुआ, ये अगला नगमा।

बहनों, अभी आप कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म संगीत का आनंद ले रही थी। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं नारी संसार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी रजनी। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज लगभग हर घर हर परिवार से जुड़ा हुआ है। विषय है मोबाइल और इंटरनेट का बच्चों पर प्रभाव और इसमें माँ की जिम्मेदारी। बहनों, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, जानकारी प्राप्त करनी हो या किसी नई चीज़ को सीखना हो, हर जगह तकनीकी का उपयोग हो रहा है। लेकिन जब यही मोबाइल बच्चों के हाथों में बिना किसी सीमा और निगरानी के पहुंच जाता है तो इसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगते हैं। आजकल अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे घंटों मोबाइल पर वीडियो देखते रहते हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं। धीरे धीरे उनकी रुचि किताबों, खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताने से कम होने लगती है। इसका असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद पूरी नहीं होती है, आँखों में दर्द, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। माँ ही वह व्यक्ति है जो हर बच्चों की आदतों को सही दिशा दे सकती है। मोबाइल के उपयोग का सही नियम बनाना चाहिए। सबसे पहले यह जरूरी है कि बच्चों के लिए मोबाइल का समय तय किया जाना चाहिए। पढ़ाई के लिए यदि मोबाइल की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग का भी समय निर्धारण होना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार ही मोबाइल का उपयोग होना चाहिए। मनोरंजन के लिए सीमित

0: समय ही दिया जाए। दूसरी बात, माँ को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इंटरनेट पर क्या देख रहा है, कहीं उसके बहकाने की चीज़ तो नहीं देख रहा है या कोई अन्य चीज़ तो जो उसके लिए हितकर नहीं है। आजकल इंटरनेट पर अच्छी जानकारी भी है और ऐसी सामग्री है भी है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल देकर निश्चिंत हो जाना कतई अच्छी बात नहीं है। माँ को हमेशा निगरानी रखनी चाहिए जो बच्चा क्या कर रहा है, क्या मटेरियल देख रहा है या पढ़ाई कर रहा है या कुछ और, ये सभी जानकारी माँ को प्राप्त करना चाहिए। अगर माँ वर्किंग हो तो जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, चाची हो मतलब बुआ हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर वो निगरानी रखे ताकि बच्चे बड़े होकर के संस्कारी और अच्छे नागरिक बने। समय समय पर उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाना। यदि माँ रोज़ कुछ समय बच्चों के लिए समय देगी तो बच्चे अच्छे नागरिक भविष्य में बनेंगे। तो बहनों, इस बातचीत के विषय पर विराम देते हुए आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। इसी कार्यक्रम के जरिए हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त है। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ

विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चारिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर के 2 बजे, और इलाकाई खबरें आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से ही प्रसारण किया जाएगा दोपहर के 2:05 पर। दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना, और देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का फिर से आनंद लेंगे दोपहर के 2:30 पर, और प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर के 3 बजे। गुजराती गीत सुनेंगे सुरेश रावल के स्वर में। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण सुन सकते हैं, और हमारे पटना केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ एपिसोड 13 आप सुनेंगे शाम के 5:10 पर। शाम के 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों के कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा मिथिलांचल के प्रमुख दर्शनी 5:05 पर। दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना, और देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का फिर से आनंद लेंगे दोपहर के 2:30 पर, और प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर के 3 बजे। गुजराती गीत सुनेंगे सुरेश रावल के स्वर में। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण सुन सकते हैं, और हमारे पटना केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ एपिसोड 13 आप सुनेंगे शाम के 5:10 पर। शाम के 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों के कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा मिथिलांचल के प्रमुख दर्शनी

आइए श्रोताओं, आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आप।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना। मैं जानती हूँ मेरा इंतज़ार आप पूरे हफ्ते करते हैं और मैं भी आप सबों का इंतज़ार पूरे हफ्ते करती हूँ। और इस दिन शनिवार के दिन हर शनिवार को मैं आपके साथ मिलकर सुनती हूँ आपके पसंदीदा गीतों को। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफ़र का इस पहले गीत के साथ जो है फिल्म। और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं नेहा रंजन, विनय रंजन, बेला गार्डन वार्ड नंबर 3 दरभंगा बिहार से, औरंगाबाद राज से राजेश अमरी पाटिल, सीता राजेश पाटिल, राजदीप राजेश और राजेश इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकालपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोडकर। ये हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और फुटानी चौक लर्निंग स्टेशन।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: तो ये गीत थी फिल्म प्यार किया तो डरना कैसे, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे नाहरमन टोला से कादिर अली, भाई जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। इसी गीत को सुनने को पसंद किया था राजनगर चांदनी चौक मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, वनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार एवं मित्रगण। छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता एवं सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रताप कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मोंटू कुमार गुप्ता एवं रितकी कुमार गुप्ता। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मास्टर रुद्ध गुप्ता एवं एमके गुप्ता। इसी गीत को सुनना चाह रहे थे ग्राम पैजनिया से जिला जलौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आपके पसंदीदा गीतों को। मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना हर शनिवार को आती हूँ आपके ढेर पसंदीदा गीतों के साथ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस सफर का ये गीत। ये गीत है फिल्म नमक हलाल से, और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक कुमार, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। पिपरा पारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। ये हैं लाल पोखर दरभंगा से मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद आशिम, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अगान, सोनी परवीन, शास्ता परवीन, समा परवीन, डॉली परवीन और मेहरा परवीन। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं मेघर निगड़ उमर खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गंगवाकर, श्रीमती श्रीता गंगवाकर, प्रिंस एकांश गंगवाकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत परिणीता अर्जुन गंगवाकर। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गंगवाकर, सुमित गंगवाकर, कुमारी ध्वनि गंगवाकर। और फिल्म सिटी मुंबई से मंजीत गुप्ता, सोनी गुप्ता, हैप्पी गोल्डी, गुट्टू भाई, ओल्ड लिस्नर ग्रुप राजनगर से कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, मास्टर तन्मय राज और रुद्र गुप्ता। ऐशबाग कॉलोनी से मुकेश रानी, पलक और पूंजिता गुप्ता। तो आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद फिल्म नमक हलाल से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

फिल्म दीवाना का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी विनोद राठौर और अलका याग्निक की। अपने समय का एक बहुत ही चर्चित गीत, बहुत ही उम्दा गीत, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोमन थापा, रेशमा थापा, अदिबा थापा, बिहार कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफरदीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमार डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित्रा नारंग। इसी गीत को सुनना पसंद किया था महाराष्ट्र हिंगोली से सहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राजेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी और फलना झा, साथ में रिया रानी। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार एवं कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम आपकी पसंद का। चलिए बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर, और ये पसंद है फिल्म बेताब से लता मंगेशकर।

और शब्बीर कुमार की आवाज में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल बचक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। इसी गीत को सुनना पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, मोहित और रोहित। साथ ही साथ सेक्टर मोहाली, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, राजवीर, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर आनंदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। साथ ही साथ बेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची और तनु कर्मकर। इनामत टोल भगवतपुर बिहार, भगवतीपुर बिहार से नूतन सैनी, कंचन, बबीता, कोमल, नव्या, सुधा, विभा सैनी, ज्योति, पार्वती, त्रिपुरारी सैनी, संतोष कुमार सैनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सैनी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बेताब से।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ स्टूडियो की घड़ी मुझे कह रही है अब इजाज़त ले ली जाए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार 8460004।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ स्टूडियो की घड़ी मुझे कह रही है अब इजाजत ले ली जाए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार 8460004।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

0: के बीच होने वाले व्यावसायिक लेन देन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की कल से शुरुआत हो रही है। वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह अभियान शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय ध्वज के साथ नागरिकों का अटूट और भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना। तिरंगा केवल सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि हर भारतीय के घर तक पहुंचे और उसके मन में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जो 17 अगस्त तक चलेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस उपलब्धि से यह जानकारी मिली है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरण ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राजगीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, गया, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं रोजगार सूचना। रोजगार सूचना में आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुल पद 395, आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 50 साल। ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक कुल पद 545, आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in में जाके प्राप्त कर सकते हैं। LOB पद की वैकेंसी है और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR

कुलपद 200। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक। शैक्षणिक योग्यता SSC या मैट्रिकुलेशन और ITI पास्ट। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। NFR रेलवे एप्रेंटिस एक रिक्वायरमेंट 2026, कुल पद 6,777। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr.requirement.in पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, कुल पद 163। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पे जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज रोजगार सूचना में आज बस इतना ही।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बारतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।

0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है।

0: है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समा

0: कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

फिल्म साजन से लिए गए इस गीत को भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म आई मिलन की रात से।

आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म मिस्टर नटवर लाल का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सर से, आवाज़ है अलका याग्निक की।

फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम सुरेश रावल की आवाज़ में।

हमारे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

0: आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंश राज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाई गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साकरकर रोहित सुनीता अरविंद साकरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोता संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमुरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमुरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, माशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बैनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव कहाँ चला गया? केशव, वो तीसरी गलती हो गई। और केशव से कहूंगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम केशव ठाकर जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ
1: केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक्रोफोन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ, तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। सज्जनों तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता, मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सके ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: तो रहोगे फिर सब आ गए। आओ, सब आ जाओ।

0: आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
1: आखिर हुआ क्या कांता?
2: अरे नंदलाल मैं बताती हूँ, असल में कांता और निरंजन।
3: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है, हम प्रेमी नहीं है।
1: प्रमोद तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
4: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को

0: Kanta Goswami, do hereby declare.
1: अरे प्यारे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ. लाइए अपना कागज मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ.
0: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता.
1: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है.
0: मुझसे सुनो मेरी घोषणा. मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ. अलविदा अलविदा.
2: मुझे विश्वास हो गया है कि.
0: कैसा विश्वास?
2: कि तुम मुझे प्यार करते हो.
0: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर.
2: नहीं प्रमोद, रुक जाओ. इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी. लाओ पिस्तौल मुझे दो.
0: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो. तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से.
2: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से.
0: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो. कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा.
2: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन.
0: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा. तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो.
3: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं. मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था.
1: है? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
3: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए.
0: कैसे पैसे?
3: ब्लैकमेल के पैसे.
1: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
3: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं.
1: है?
0: कितने रुपए मांगता है वो?
3: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ.
0: यहाँ?
3: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है. और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा.
0: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा. शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता
2: हूं. नहीं, तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी.
1: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी.
0: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा. तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ. लो वो आ गया.
4: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन.
3: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे. ये सब मेरे मित्र हैं. ज्योत्सना, तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो.
1: हाँ हाँ.
3: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये है मिस्टर देश पांडे. जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे. सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
0: आखिर बात क्या है नंदलाल?
3: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं. देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे. और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का. भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है. इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं. आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा. आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी.
1: नंदलाल, मेरे हाथ में ये

0: स्टॉल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
1: अरे जोसना, ये क्या कर रही हो?
0: भाभी
1: ये पिस्तौल असल है,
0: मेरे
1: असली
0: पास दो। भाभी ये पिस्तौल मुझे दो।
2: मुझे
0: क्या
2: दो
0: कर रही हो तुम?
2: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
3: अरे भैया शिखर खोसला कौन था?
4: सीट पे बैठा था वो।
5: अरे भैया मैं लिफ्ट में बैठा था, गोली लगते ही ढेर हो गया।
6: गोली चलने वाली वो एक्ट्रेस कौन सी?
4: अरे वो एक मशहूर एक्ट्रेस कामिनी देसाई थी। कामिनी देसाई?
7: कामिनी देसाई? अरे अरे अरे वो कांता का रोल जो कर रही थी वही।
8: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
9: आपका नाम? उम्र? काम?
8: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
9: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
8: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
10: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
8: कुछ और?
10: मतलब?
8: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
10: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
8: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
10: जी जी हाँ।
8: 15 को ही क्यों?
10: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
8: ये नाटक कब हुआ?
10: पिछले महीने की 1 तारीख को।
8: नाटक का नाम क्या था?
10: किसी एक फूल का नाम लो।
8: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
10: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
11: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
12: हम दोनों प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
10: हाँ, छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
12: केशव ठाकर? वो लेखक?
10: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हा?
12: सुंदर से पूछ ले।
10: आता ही होगा सुंदर भी।
13: जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना। मुलजिमा कामिनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामिनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
8: आप दोनों साथ रहते हैं?
13: जी हाँ, मैं, कामिनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
8: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
13: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
8: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें एक पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
13: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
8: जगन्नाथ पाठक और कामिनी एक दूसरे से प्रेम

0: करते हैं, ये आप जानते हैं?
1: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है
2: सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी।
1: जाहिर है तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
3: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
1: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामनी?
1: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
4: तुम मुझे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
0: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
3: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
4: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
0: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
1: अच्छी, स्वाति जरूर आई ही ना।
4: सुंदर, अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई सिक।
1: अरे यार मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला।
0: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूं, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
4: आपने ये कैसे मान लिया?
0: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
4: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
0: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
4: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
0: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
4: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और?
0: जी
5: मैं स्वाति सोनी हूँ। पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
6: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना मिली। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
5: जी हाँ।
6: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
5: जी हाँ।
6: हाँ या ना?
5: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
6: क्या मतलब?
5: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
6: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
5: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
6: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया है।
5: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
6: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
5: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
6: आप छुपा रहे हैं।
5: आप क्या कहना ना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
6: अरे भाई,
5: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
7: सुंदर तुम बेकार इतनी करवाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एक आदमी मिलता है।
2: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
7: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
5: लेकिन कोई और जानता है?
2: कोई और जानता है?
5: केशव ठाकर,
2: वो बुद्धू लेखक?
7: हाँ, वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता।

0: है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
1: मेरा नाम केशव ठाकर, नहीं मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
2: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
1: जी, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
2: आपके स्नातक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
1: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी, जहाँ वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
2: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
1: जहाँ मैंने लिखा था,
2: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी। आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
1: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
2: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
1: जी,
2: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
1: जी, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
3: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
4: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह घूर रहे?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जरा आंशस हो गया।
2: अच्छा ठीक है ठीक है,
5: ये पाठक भी आज कुछ
2: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो उससे?
6: कह रही हूँ क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो? रिहर्सल शुरू करो ना, तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
1: कांता मान लो,
6: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
2: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
1: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यानी केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
2: कामनी भी आपसे प्रेम करती थी?
1: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
2: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
1: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
2: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
1: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
2: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
1: आज देखिए ना वकील साहब, इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
2: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
1: किस बात का जवाब?
2: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
1: अजी, इंसान को देखिए ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई, हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी, मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
2: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी, और झूठा जवाब दिया तो जेल।
1: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी, क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी, इतना भी विद्वान तो मैं नहीं।
2: आप शेखर खोसला को जानते थे?
1: जी,
2: हाँ या ना?
1: जी कुछ नहीं, याद नहीं।
2: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
1: जी, क्या बात करते हैं वकील साहब। जी, बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
2: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ, उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?

0: जी नहीं।
1: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए।
0: जी वो जी मेरी याददाश्त अच्छी नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है बताइए, शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
3: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
4: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ औरंग है, मेरी तारीफ कर रहा था।
3: सच बताओ कामनी।
4: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंतूश को प्यार करती हूँ।
3: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
4: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
3: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
4: धमकी देते हो?
3: सफाई चाहता हूँ।
4: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फूंदे पथे की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
3: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
4: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
3: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
5: मिस्टर केशव ठाकर
0: जी,
5: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
0: जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
6: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
0: जी,
6: शेखर खोसला कौन था?
0: जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
6: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
4: जी कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
6: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
7: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
6: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
7: जी वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
6: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते
7: हैं? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
8: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
4: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
3: जी,
4: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
3: ओके।
4: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है, है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
3: जी,
4: थी
3: जी, जी, बिल्कुल।
4: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
3: क्या उम्र होगी वो? लगभग
4: 7 स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे। अच्छा, कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
3: अच्छा।
4: तो जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए, ट्यूशन देती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
3: अच्छा, वहाँ
4: पे मैं, हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहाँ पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी।

0: साथ एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें, अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है, अच्छा। तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
1: जी।
0: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बाहर ही बहते जाओ लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है जी।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बढ़िया बात।
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए
1: जी,
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे, तो गणेश हेगड़े जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज के कोरियोग्राफर्स हैं
1: जी।
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा, तो अम्मी मेरी हमेशा साथ होती थी
1: अमाउंट के लालच में।
0: अमाउंट ये था हाँ कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमती मैम ने बोला बेटा करो बुरा नहीं है, अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के
1: जी जी।
0: तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी।
1: तो आप उस समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में?
0: नहीं बिल्कुल नहीं,
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा।
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो पहले गणेश हेगड़े लॉलीपॉप इन्हीं का ट्रुप चलता था। उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है, उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है
1: जी।
0: तो पोनी वर्मा ने यू नो शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी, तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो हाँ चेहरा अलग दिखता
0: तो
1: है।
0: क्योंकि आप क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं, उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है बचपन से, तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी, मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने अम्मी से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था काफी उस वक्त
1: चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे
0: स्टिल स्कूल में थी, तो वो मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर एक मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं काम
1: है।
0: बहुत बड़ी फैन, मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है,
0: सब है। जब मैं असिस्टेंट थी उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है?
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज जी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए
1: जी।
0: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे है ना?
0: बहुत ज्यादा।
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है?
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन।
1: तो हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दू, गोरी बैया तो पे वार
1: जी, जी, जी, जी,
0: तो जो अल्फाज जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए
1: जी।
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो मुझे सुकून देते हैं।
1: एक हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए आजा पिया तो है प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो।
1: चलिए,

0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ,
1: उसके
0: ये
1: बाद
0: गाना,
1: की
0: उसके बाद लग जा गले,
1: अच्छा,
0: कि फिर ये हंसी रात होना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं का एक फिल्म का गाना, सुनते हैं ये गीत,
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी।
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
0: जी,
2: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू हो जाती है जी,
2: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
0: वेरी गुड डांसर,
2: वेरी ग्रेसफुल, उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है जो कमल मास्टर जी थे
0: जी।
2: और कमल मास्टर जी बहुत कमाल, उन्होंने एक ट्रेंड जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था
0: जी,
2: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का स्टेप
0: वो सब
2: था,
0: कमल जी का दिया,
2: वो कमल जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
0: बड़ी तो, अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
2: बिल्कुल। वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे गणेश मास्टर जी, वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए,
0: क्या डायलॉग है।
2: हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती
0: जी।
2: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल।
2: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना

0: हो जाती है क्योंकि आप फीमेल आपको ही देख रही है, जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है बट आपको देख रही है, तो इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: फीमेल अदायगी
0: मुझसे मिलेगी। डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है, तो मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना और करके दिखाना
1: जी।
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के, जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते हैं अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी करी थे करिश्मा आपकी तरह करी थी, तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी
0: मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते, तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं।
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इलाका जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया।
0: मैं मजेदार बताऊं, थोड़े से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें
1: जी,
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे पीछे
1: क्या
0: पीछे,
1: बढ़िया
0: पीछे,
1: गाना
0: पीछे,
1: है
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं जिन्होंने देखा है बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी।
1: नहीं आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से, तो
0: उस वक्त काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो
1: जी।
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल ये गाना हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी ने गाया हुआ ये गाना है, और बड़ा खूबसूरत वो बुलंद आवाज के साथ, उस बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है, तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं, तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

एक गीत तो बड़ा प्यारा है, हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है।

0: और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके यूट्यूब पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि 2 लड़कियां थी
0: ऐसा
1: वहां पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूं, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है।
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो जैसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट
0: जी जी
1: पर्सनालिटी
0: जी
1: बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोल,
0: फोड़ने वाला
1: मटकी
0: गाना।
1: फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहां पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे?
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, 2nd ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि
0: अच्छा
1: कोई बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
0: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
1: हाँ
0: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे
1: बहुत
0: बायोटेक्निकल
1: कुछ
0: नेम्स और बहुत सारी
1: बहुत
0: चीजें
1: कुछ,
0: होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
1: तो
0: डर
1: ऐसा
0: तो
1: होता
0: उनसे
1: था कि
0: लगता है आपने
1: असिस्टेंट
0: पढ़ा।
1: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी,
0: ये
1: और
0: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
1: बिल्कुल यही मैं
0: सकते।
1: चाहती थी कि आपके
0: जी
1: जरिए पता
0: तो
1: चले
0: हमारे
1: लोगों को।
0: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: प्लस पढ़ाई भी हो रही है वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
1: बिल्कुल
0: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना, फिजिक्स
1: बिल्कुल
0: की मैथ्स भी होती है।
1: बिल्कुल,
0: और
1: इसलिए जब 2nd ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
0: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
1: हाँ
0: है।
1: बीके मैं मास्टर थी, मैं अपनी क्लास
0: जी
1: की, मतलब मैं
0: क्या
1: खुद,
0: बात है, बुक
1: हाँ
0: कीपिंग की
1: पढ़ाई में
0: है।
1: अच्छी, हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो, तो जो
0: हाँ
1: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है, जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
0: जी
1: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
0: जी
1: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है जल्दी उठना है,
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल।
1: आज

0: भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है
1: जी।
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है।
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग बेचैनी।
0: ये बिल्कुल, मैं अपने
1: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना।
0: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा।
1: जी,
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पाय कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर,
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी।
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी।
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा।
0: हाँ जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था
0: शबीना है ना
1: के लिए। हाँ।
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर जाके वीजा लगवा रहे।
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी कर रही थी।
1: क्या खूबसूरत गाना है।
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी। असिस्टेंट डेज की बात है।

0: तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना, वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती
1: हूं। 2003 की फिल्म है
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: मुझे ब्रेक मिल रहा है, आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए जी।
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, इसे मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी उसकी, चंदन अनुरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना फिर।
1: वो गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिन,
1: बहुत अच्छा किया था अंतरा माली ने, बढ़िया किया था,
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। इसे मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार माधुरी दीक्षित।
1: अभी अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगे मेरे गाने।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना एडिट करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे,
0: जैसे तुमने यही सीखना और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो।
1: जी जी।
0: तो राम गोपाल वर्मा इज माय फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माय सेकंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माय फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं
1: जी।
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माय गॉड ये मेरा क्रिएशन है। जब 70mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं
1: जी,
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली मैं, जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस डांस
0: को जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे,
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ,
0: एडिटिंग तक,
1: हाँ,
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं
1: जी।
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं
1: जी,
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं। तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है, हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी

0: पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी
1: तो,
0: चाहिए।
1: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है
0: जी,
1: प्रेम रतन धन पायो फिल्म से है, गाना है जलते दिए।
0: बहुत खूबसूरत गीत है,
1: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी
0: जी जी,
1: जो आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
0: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष

0: मन में वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और
1: जी
0: वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहां से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे
1: बिल्कुल।
0: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
1: सो
0: सुना
1: अगर
0: दें।
1: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
0: सुनेंगे और बाद
1: हिंदुस्तान
0: में देखेंगे भी।
1: के देखेंगे और सुनेंगे,
0: जी
1: तो ये जो दिए देख रहे थे आपके, गाना था जलते दिए,
0: जी
1: तो हमारे जो सूरज बजात्या जी है उनको तो
0: जी
1: सब जानते हैं,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन है वो,
0: जी
1: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
0: बिल्कुल, बहुत
1: उनसे मैंने,
0: सरल
1: वो
0: है।
1: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: जी
1: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
0: खुद जलाएंगे यानी,
1: नकली दिए भी मिलते हैं जो
0: हाँ
1: आप
0: वो,
1: ऑन करके डाल
0: हाँ
1: दो।
0: एलईडी वाले।
1: ही
0: जी
1: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूं कि हम दिए जलाएं, जितनी
0: असली दिए
1: दिए
0: जलाए।
1: दिख रहे हैं हम
0: हाँ
1: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
0: ये
1: इस
0: बढ़
1: गाने
0: जाते
1: की।
0: हैं का ये काम ऐसा
1: हाँ, तो
0: होता
1: उसमें
0: है,
1: दिए
0: ये
1: जलाने में मैं
0: ऑथेंटिसिटी
1: भी होती
0: होती
1: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
0: जी, और
1: आपने जो
0: उसके साइड
1: सवाल
0: से ही
1: किया,
0: पट्टी
1: साइड
0: पे भी
1: में
0: जल रहे हैं। जी
1: जहां जहां वो जा रही है
0: हाँ
1: वो दिए जल रहे हैं,
0: जी
1: और उन दियों को हम जलाते थे, और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
0: हाँ और वो
1: तो वो
0: बहुत लाइट
1: चलकर,
0: नेट की
1: हाँ,
0: साड़ी है वो।
1: तो
0: जी
1: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
0: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
1: हाँ
0: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
1: नहीं,
0: रही है और
1: वो
0: वो।
1: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
0: जी
1: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
0: जी
1: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
0: जी
1: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
0: डॉक्टर्स होते
1: सेट
0: हैं, एम्बुलेंस
1: डॉक्टर्स
0: होती
1: होते
0: है।
1: हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
0: जी
1: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
0: हाँ
1: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
0: हाँ
1: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
0: इक्विपमेंट्स
1: सेफ्टी
0: और सेफ्टी नॉर्म्स के
1: बहुत
0: साथ में
1: जरूरी है,
0: ही
1: बहुत
0: काम करना
1: जरूरी।
0: चाहिए।
1: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
0: बहुत
1: कोमलता
0: रिच
1: से
0: सॉन्ग है,
1: दर्शाया गया,
0: बहुत प्यारा, बहुत
1: बहुत
0: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
1: बिल्कुल
0: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे, सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा है, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता
0: जी, जी,
1: रेखा जी
0: आए।
1: हमारी उमड़ाओ जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कम्फर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल में तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता है।
0: इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, यार मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल, आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में

0: सोनाक्षी में है. सोनम इज रियली गुड. सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो. शी वर्क्ड रियली हार्ड विथ मी. अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर. शी वर्क रियली हार्ड. रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ. जो जलते दिए में आप देखिए,
1: उसके साथ
0: बिल्कुल शकुंतला बन गई थी वो. बिल्कुल
1: ऐसा ही, यही दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था. शी वॉज वेरी गुड,
0: वेरी ग्रेसफुल.
1: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार.
0: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी.
1: अच्छा.
0: नई लड़की, आज की लड़की है. बहुत ग्रेसफुल है वो भी. तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते हैं और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए.
1: सही बात है, कहेंगे लोग.
0: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है वही है. तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क्ड हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव.
1: इनके कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी. जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए. ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में. तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है.
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
1: जी.
0: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक ही जरा जरा
0: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
1: जी.
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी. शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन. शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखाइए गाना पूरा. और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया. शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है.
1: क्या बात है.
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट. और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया. उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी. आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है.
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को, उन्होंने अगर माधुरी उसके जैसा,
0: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
1: जी.
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजाजिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
1: जी.
0: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया. बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल जो गाना है. मैं असिस्टेंट

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे। जाहिर है थोड़ी सी गर्मी से राहत हम सबको मिली है। तेज़ और हल्की हल्की पूर्वा हवा चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, तो हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बारिश लगातार होती रहे, तो ख़ास तौर पर हम युवाओं को, किसानों को काफ़ी मज़ा आता है, हमारे फसल काफ़ी अच्छे होते हैं और हम काफ़ी अच्छे होते हैं। और कोशिश करते हैं कि युवा वर्ग के जितने लोग हैं, जितने भी लोग हम युवा जुड़े हुए हैं किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बातों से, तो हमारे दिल और मन के हिसाब से कोई भी ऐसा काम हो सके और हम खुश रहें, खुशहाल रह सकें। और इस मौसम में ख़ास तौर पे जून, जुलाई, अगस्त का जो मौसम होता है, अगस्त के मौसम में ऐसा होता है कि कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी फिर अचानक से मौसम बदल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही मौसम रहे और यूं ही हम बैठकर, घर बैठकर आराम से किसी न किसी चीज़ का लुत्फ़ लेते रहें। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी आकाशवाणी के दरभंगा के जितने भी श्रोता हैं वो कार्यक्रम को सुने, और जो हमारे युवा दोस्त हैं इस कार्यक्रम का यूं ही मज़ा लेते रहें। श्रोताओं कहा जाता है कि जितने भी हमारे युवा हैं, या युवा देश की आन बान शान होते हैं, युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। युवा हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राज्य को आगे ले सकें, आगे बढ़ा सकें, और हमारी भी यही कोशिश होती रहनी चाहिए। युवाओं के कंधे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है किसी भी परीक्षा के लिए, ख़ास तौर पे जब नए जनरेशन के लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं जैसे उनका इंटर का एग्ज़ाम हो, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही वो करना शुरू कर देते हैं। और ये करते हैं, ये कहते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हाँ, जो हमारी मेहनत है, चूँकि जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है, जो टाइमिंग होती है, वो जनवरी, फरवरी, मार्च से शुरू हो जाता है या फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाता है, तो अभी से ही हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसकी तैयारियों में हम लग जाते हैं, जुट जाते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम यूँ ही अच्छा हो, हम आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ कामयाबियाँ हासिल करें, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को वो सम्मान दे सकें, वो खुशी हम दे सकें। युवाओं के कंधे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। बात हम कर लें कि आज के जो हमारे जनरेशन के युवा वर्ग के लोग हैं, वो युवा वर्ग के लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी चीज़ है वो अच्छा हो सके और हम उसमें अच्छा से अच्छा कर सकें। श्रोताओं, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद और फिर बातें करते हैं।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं युवानी कार्यक्रम में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे युवा वर्ग के जितने भी सारे लोग हैं वो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने जो गोल है उनका, उस गोल में वो बिल्कुल अपने आप को लगा रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम युवानी को भी सुन रहे होंगे। और आपके रेडियो पर थोड़ा सा देर करते हुए आपके रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा मैथिली गीत।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं युवानी कार्यक्रम में और हम बातें कर रहे हैं कि युवाओं को देश के प्रति, समाज के प्रति एक अलग ही जोश और जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, अपने गोल के प्रति, अपने समाज के प्रति, और छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखते रहना चाहिए और जीवन में यूं ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हम आगे कामयाब हो सके। सड़क सुरक्षा पर भी हम युवाओं की एक विशेष जिम्मेदारियां है, जो हम अपने युवा वर्गों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि हम सड़क सुरक्षा पर भी अपना पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान आकर्षित करें और कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन जो अनमोल है, हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। खुद के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा और सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। सड़क पर हम गाड़ी, ट्रैफिक, यातायात जो नियम है उस नियम के हिसाब से ही चलाएँ और जो नियम कहता है उस नियम से, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गति कम करके गाड़ी चलाएं, स्पीड कम करके गाड़ी चलाएं, रेड सिग्नल होने पर हम रुक जाएं, जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ें, तो ही हम सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित, हमारे परिवार सुरक्षित। इन चीज़ों का हमें पूरा विशेष ध्यान रखना चाहिए, पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम ये कोशिश करें कि हम उसमें सफल हों या ना हो, हमें एक जानकारी ज़रूर मिले। और इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए युवानी कार्यक्रम से।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। अगला प्रसारण कुछ ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्राकृतिक की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफर पे आपसे फिर से मुखातिब हैं हम। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश, और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, आप सभी का स्वागत। रिमझिम इस मौसम में आप बने रहें हमारे साथ। हम आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे नगमे, उस दौर के जो काफ़ी करीब का दौर है हमारे, और उस दौर को काफ़ी पसंद भी किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80s और 90s की। इस दौर में एक फिल्म आई थी 1988 में, फिल्म थी दयावान। इस फिल्म में सितारे थे विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित, फिरोज खान, आदित्य पंचोली, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस फिल्म के निर्देशक थे फिरोज खान। और इस फिल्म में जो माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की केमिस्ट्री दिखाई गई बहुत ही गजब की थी। और चलिए, इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा पंकज उधास और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में आप सबके लिए हम लेकर आए हैं।

सहरा मिट्टी से तैयार करके उसे रंगा जाता है। महिला गुड़िया रंग बिरंगी घाघरा चोली, गलसन माला, हंसली और कड़े पहनती है। पुरुष गुड़िया धोती कुर्ता में होती है और हाथ में तीर कमान या और कोई औजार लिए हुए होती हैं। ये गुड़िया जोड़ी में बनती हैं और छोटी से लेकर 5 फीट तक की होती हैं। ये शिल्प आदिवासी महिलाओं को रोजगार देता है। कई परिवार इसी कला से अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, भगोरिया हाट जैसे मेले में इनकी अच्छी बिक्री होती है और अब तो ये गुड़िया देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंच रही है। कुछ कारीगरों को इसके लिए पद्मश्री जैसे सम्मान भी मिले हैं। आज के समय में मशीन से बनी वस्तुओं के कारण इस पारंपरिक कला को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमें स्थानीय कारीगरों का समर्थन करना चाहिए और उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदना चाहिए। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी और कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। मध्य प्रदेश का गुड़िया शिल्प हमारी लोक संस्कृति, रचनात्मकता और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। हमें इस कला का सम्मान करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ये कला हमारी संस्कृति को बचाए रखने का एक माध्यम है। अगर हम इसे बढ़ावा देंगे तो नई पीढ़ी भी इससे जुड़कर अपनी जड़ों से परिचित रहेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप झाबुआ की गुड़िया देखें तो याद रखें कि उसमें मध्य प्रदेश की आत्मा बसती है। तो आइए आप और हम मिलकर इस सुंदर सी कला को संजो कर रखें और इसे आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आशा भोसले भले ही इस दुनिया से विदा हो गई हो, लेकिन उनकी आवाज, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। तो आइए आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अदनान सामी की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, किसी कारणवश हम आपको दिल्ली केंद्र नहीं ले जा सके, इसके लिए हमें खेद है। वापस आकाशवाणी दरभंगा लौटते हैं और हम बातें कर रहे थे युवाओं के लिए। युवाओं का जो रोल है, जो कर्तव्य है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। युवा एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। एक लड़का कहा जाता है, ख़ास तौर पे जो लड़कों में की बात होती है या जो भी यूथ जनरेशन के लोग होते हैं, वो अकेले माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं, पूरे समाज के साथ उनको खड़ा होना होता है। माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों को ज़रूर, लेकिन बच्चों का एक कर्तव्य होता है, लड़कों का, युवाओं का एक कर्तव्य होता है कि वो समाज के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहे। इस क्रम में कभी कभी कुछ ऐसी तकलीफ़ें आ जाती है, लेकिन उससे डरने और हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हम समाज के साथ यूं ही दुख सुख में बने रहें, ताकि समाज हमारे दुख सुख में बना रहे। और जो हमारा समाज है वो एक परिवार की तरह है, और इस परिवार को हमें अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक लेकर चलने की ज़रूरत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा मैथिली गीत।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि ये मैथिली सुगम संगीत हमारे युवा श्रोताओं को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं एक और मैथिली गीत।

अच्छा लग रहा होगा। युवाणी कार्यक्रम में हम बातें कर रहे थे कि युवाओं का जो रोल है, युवाओं की जो भूमिका है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। युवा देश की भविष्य हैं, युवाओं के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो खुद के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके। श्रोताओं, हमने बातें की कि युवाओं को जो यातायात नियम है, यातायात के नियमों का बिल्कुल पालन करते रहना चाहिए, यूँ तो हम सबको करते रहना चाहिए।

चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, दो पहिया गाड़ी चलाते समय तिरपल लोडिंग नहीं करना चाहिए, गाड़ी के सारे पेपर होने चाहिए, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है या ड्राइविंग लाइसेंस मेरे खुद की है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और प्लस जो हमारी उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी हम सब सुरक्षित होंगे। दूसरी चीज़ है कि पर्यावरण, जो हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। अभी जो समय है वो हम लोगों ने देखा कि लगातार हर जगह पर, गांव में, शहर में, हर जगह पर लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि कम से कम हमें भी कुछ पेड़ अपने जीवन में लगाते रहना चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। पर्यावरण बहुत ही बड़ी समस्या है, इसका हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पर्यावरण अगर खराब हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, तो जाहिर है कि हम सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले समय में। उसके बाद प्लास्टिक की चीज़ें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रख सकें। हम कोशिश करें कि प्लास्टिक की बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसका हम कम प्रयोग करें। जो थैले, कपड़े का थैला है, उसको लेकर मार्केट में जाए सब्जी लेने के लिए या कुछ भी ऐसा चीज़ करने के लिए, तो धीरे धीरे कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी योजना, एक बैग सफल नहीं होती है जब तक हम लोग उस पे सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश तरक्की की राह पर होगा। सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती ज़रूर है, लेकिन कभी-कभी वो चीज़ सही ढंग से काम ना होने की वजह क्या है कि जनता, जो हम लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो जागरूकता नहीं फैला पाते उन सब चीज़ों के लिए। हम सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि चलो यार हमें क्या है, हम कर लेंगे तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है बिल्कुल। धीरे धीरे ये सही, किसी चीज़ में बदलाव तभी हो पाएगा जब तक हम किसी चीज़ के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, और कदम बढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी है। किसी भी मुद्दे को आप छोटी सी पहल, आप रोज़ किसी चीज़ को एक आदत डाल लें अपने लाइफ स्टाइल का, जो आपका 24 घंटे का समय हमें मिला है, उस 24 घंटे के समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी बदलाव हम अपने जीवन में करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस वादे के साथ कि जो हमारा कल है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो बेहतर होगा आज के हिसाब से। ये सोचकर हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए, ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो एक बदलाव की ओर होना चाहिए, एक बदलाव के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा समाज सुधर सके। उम्मीद करते हैं श्रोताओं कि ये कार्यक्रम युवाणी बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, और इस वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है और अब वक्त हो चुका है कि श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं कुछ गाने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमको दीवाना कर गया में सोनू निगम को। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन

0: के बाद ये बात कही। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से 6:25 पर प्रस्तुत किया जाएगा। गांव घर का कार्यक्रम होगा 6:30। साथ ही साथ आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। छह बजकर 55 मिनट पर आपको सुनवाएंगे पटना से किसान वाणी। 7:55 पर पटना से कार्यक्रम विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर पटना से प्रादेशिक समाचार। 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुनेंगे 7:50 पर फिल्म संगीत।

प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से उड़ान प्रस्तुत किया जाएगा 8:15 पर। लोकगीत का हमारा कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

रात 11 बजे आप दिल्ली से सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, 11 बजे हिंदी समाचार दिल्ली से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा कल 9:50 पर। फुलवाड़ी कार्यक्रम का समय होगा 10:30 पर। हेलो जिंदगी आप सुन पाएंगे कल दिन के 11 बजे। विषय होगा विकसित भारत का लक्ष्य और युवाओं के दायित्व। विशेषज्ञ होंगे अमरेंद्र कुमार अमर।

सखी बहन कार्यक्रम होगा 12 बजे। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: आप सुन रहे थे विद्यापति गीत, कलाकार थे काशीकांत झा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटनाक बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रक प्रतिनिधि सभक सम्मेलनक उद्घाटन कयलनि। एहि मे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आ ओडिशाक प्रतिनिधि सभ आबि रहल छथि। कार्यक्रम के संबोधित करैत मुख्यमंत्री जनौलनि जे राज्य में मानव तस्करी के लऽ कऽ सरकार जीरो टॉलरेंसक नीति पर काज कऽ रहल अछि। ओ जनौलनि जे गुम, हेरायल बच्चा सभक खोजबीन आ मानव तस्करी रोकय पर सरकारक ध्यान अछि। एहि मौका पर सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश ए अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालयक न्यायाधीश राजीव रंजन, गृह विभागक कतेको वरिष्ठ अधिकारी सहित आनो आन गणमान्य लोक सभ छलाह। ओतहि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी जिला में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क पाउडर संयंत्र आ मत्स्य जीरा बैंक उत्पादन संयंत्रक उद्घाटन कयलनि। एहि बीच मुख्यमंत्री जिला में कतेको विकास योजनाक सेहो शुरू कयलनि। एहि सँ पहिने श्री चौधरी पुनौराधाम गेला और माँ जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कयलनि। संगहि चलि रहल विकास आ निर्माण काजक सेहो जायजा लेलनि। ओ जनौलनि जे

0: 31 दिसंबर 2028 धरि मंदिर बनाकऽ माँ जानकी के मंदिर में स्थापित कऽ देल जायत। ओ मंदिर परिसर में लागल सिक्की कला और बजिका कला सेहो देखलनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्लीक विद्यार्थी सभ सँ जनौलनि जे ओ सभ अपन निर्णय में राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि राखैत। श्री मोदी IIT दिल्लीक 57 दीक्षांत समारोह के संबोधित करैत जनौलनि जे प्रत्येक पीढ़ी अपन समयक विशिष्ट चुनौतीक सोझा करैत अछि और अपन राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभावैत अछि। प्रधानमंत्री जनौलनि जे देश में नव क्षेत्रक विकास युवा सब लेल नव मौका उभरि रहल अछि। ओ सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष आ ड्रोन जेहन क्षेत्रक चर्चा करैत जनौलनि जे भारत सब क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनबाक लेल काज कऽ रहल अछि। श्री मोदी जनौलनि जे आत्मनिर्भरताक ई पहल विकसित भारतक निर्माण लेल एक मजगूत आधारक काज करत। सूचना प्रसारण मंत्रालय राज्य सभक मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग सँ आपदा प्रभावित आ संवेदनशील क्षेत्र में नव सामुदायिक रेडियो केंद्रक स्थापना के बढ़ावा देबाक लेल जनौलक अछि। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आई नव दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा सँ भेंटघाट कयलनि। श्री कुमार संवाददाता सभ सँ गपशप में जनौलनि जे बिहारक हेल्थ केयर सेंटर में भऽ रहल काज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ट्रामा सेंटर और रेफरल व्यवस्था में सुधार लेल चर्चा कयलनि। भारतीय भुगतान परिषद PCI जनौलक अछि जे UPI के माध्यम सँ कयल जाय वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ता सभ लेल निःशुल्क होयत। व्यापारी सभ सँ डिजिटल भुगतान लेबाक लेल कोनो शुल्क नहि लेल जायत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणक स्कैन एंड रजिस्टर सेवा 25 करोड़ OPD पंजीकरण कयलक अछि। स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार ई उपलब्धि सँ ई जनतब भेटल अछि जे मिशन में नागरिक सभ पर केंद्रित डिजिटल सेवाक तेज गति सँ विस्तार भऽ रहल अछि। देशभर में हर घर तिरंगा अभियान काल्हि सँ शुरू भऽ रहल अछि। वर्ष 2022 में आजादीक अमृत महोत्सवक बीच ई अभियान शुरू भेल छल। एहिसँ राष्ट्रीय ध्वजक संग नागरिक सभक अटूट आ भावनात्मक रिश्ता बनाबै अछि। तिरंगा सरकारी संस्था और सार्वजनिक स्थान धरि सीमित नहीं रहे, अपितु हर भारतीय के घर धर पहुँचे और हुनका सभक मन में देशक प्रति गर्व आ जिम्मेदारीक भावना के बेसी मजबूत करे। एहि मौका पर प्रदेश भर में कतेको ठाम विशेष कार्यक्रम शुरू होयत जे 17 अगस्त धरि चलत। नाइजीरिया के राजधानी अबुजा में भऽ रहल फीडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में बिहारक 3 खिलाड़ी स्वर्ण और रजत पदक जीतलक अछि। संगहि पुणे में 12-23 अगस्त धरि होय वाला 16 हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता लेल बिहार टीमक घोषणा कऽ देल गेल अछि। बिहार राज्य खेल प्राधिकरणक महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकरन जनौलनि जे ई चैंपियनशिप लेल बिहारक महिला हॉकी टीमक चयन राजगीर खेल अकादमी में भेल चयन ट्रायलक आधार पर कयल गेल अछि। अररिया जिला उद्योग विभागक महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल के निगरानी विभाग 50,000 टका घूस लैत ठामे गिरफ्तार कऽ लेलक। भेटल जनतबक अनुसार 17 लाखक मशीन देबाक लेल घूस मांगल जा रहल छल। संगहि जिला में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनाक समीक्षा बैसक भेल। बैसार में जिलाधिकारी विनोद दुहन स्वीकृत 31 आवेदक सभक घरक छत पर 3 दिन में सोलर पैनल लगेबाक लेल जनौलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व श्रोता लोकन के मिहिर कुमार झा के नमस्कार स्वागत। श्रोता लोकन आज शनि दिन है, आजुक दिन गाम घर कार्यक्रम में अपना सब झरोखा नामक कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत सुने छी। श्रोता

अपनासभ जनैत छी जे झरोखाक अर्थ होइत छै छोट खिड़की, जालीदार रोशनदानके कहल जाइत छै झरोखा। ई छोट खिड़की वा रोशनदान छोट छीन घरमे ऊपरमे एहि दुआरे लगाएल जाइत छै जे घरक भीतर स्वच्छ आ ताजा बसात आ इजोत जाइके लेल सङ्गहि सङ्ग घरक गोपनीयता बरकरार बनल रहे, ये ले ई झरोखा लगाएल जाइत छै घरमे। कहबाक तात्पर्य श्रोतागण, जेना झरोखाक माध्यमे हवा आ रोशनी जाइत रहै छै घरक अन्दर, ओहि तरहे अपने सबके ई रेडियोके माध्यमे हमरा सब अपने सबके लग अपने सबके घरमे गीतनाद अपने सबके मन लगु जे गीतनाद छै, सङ्गे सङ्ग अपने सबके लेल ज्ञानवर्धक गप सब एहि सब कार्यक्रम अपने सबके एहि कार्यक्रमके अन्तर्गत अपने सबके हमसब पहुँचबैत रहै छी। श्रोतागण, अपना सबके बुझल अछि जे मिथिला प्रदेश एक समयमे विश्वगुरु सेहो रहल अछि। सङ्गे सङ्ग श्रोतागण, आनठामक धरतीसँ फल फूल अन्न एहि सब तरहक वस्तु उपजैत रहल अछि, परञ्च मिथिलाके धरासँ तऽ फल फूल अन्न सब तऽ उपजिते अछि। एहि धराके माटिसँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीताके प्रादुर्भाव करैके सौभाग्य एहि माटिके मिथिलाके माटिके सेहो प्राप्त भेल अछि। एकर नाम मिथिला जे छै से वेदोमे भेटल अछि। मिथिलाके वर्णन वेद पुराणसँ लऽ कऽ उपनिषदमे सेहो कयल गेल अछि। श्रोतागण, अपन सबके मिथिला जे अछि एगो तीर्थ क्षेत्र मानल जाइत अछि। सङ्गे मिथिलाञ्चलमे कतेको दर्शनीय स्थल सब अछि जे भव्य आ दिव्य सङ्ग दर्शनीय सेहो अछि। श्रोतागण, मिथिला क्षेत्रमे दर्शनीय स्थलके गप करब तऽ दरभंगामे श्यामा मन्दिर, श्रोतागण ई माँ कालीके मन्दिर छी श्यामा मन्दिर, जे दरभंगा महाराजके श्मशान अर्थात चितापर स्थित अछि। माँ श्यामा मन्दिर जे राजाके चितापर स्थित छनि, हमरा बुझलासँ आनठाम कतहु भगवतीके एहन दिव्य भव्य आ जागृत माँके स्वरूप जे भक्तके लेल कल्याणदायिनी विग्रह आनठाम सैदे भेटत। माँ श्यामा माइके प्राङ्गणमे एक गोट सुन्दर सन पोखरि, पोखरिक सब माहरमे कतेको मन्दिर प्राङ्गण भव्य छैक, दिव्य आओर विशाल प्राङ्गणके अन्दर विवाह भवन सेहो सुन्दर आ नीक लगैत अछि। माँ श्यामा माइके दर्शनके लेल भक्तक अपार भीड़ भोर आ साँझके माँके दर्शन करय लेल अबैत रहैत अछि। एतबे नहि, मिथिलामे दर्शनीय स्थलमे अहिल्या मन्दिर, जानकी मन्दिर सीतामढ़ी आ जनकपुरमे माँ जानकीके दिव्य आ भव्य मन्दिरके सङ्ग विशाल प्राङ्गण जे जनकपुरमे अदोकालसँ अपना सबके एहिठाम स्थित अछि। सङ्गे सङ्ग श्रोतागण, अखन तऽ सौन मास चलि रहल अछि, अखन तऽ मिथिलामे शिवालय जतय भक्तगणक अपार भीड़ जलाभिषेक बाबाके लिंग पर घंटो घंट अपार श्रद्धाके साथ जलाभिषेक करय लेल घंटो जल लए कऽ जाइत रहै छै, जाहिमे कुशेश्वर स्थान, सिंहेश्वर स्थान, बाबा जागेश्वर, बाबा अजगबीनाथ, बाबा गरीबनाथ, एहि तरह कतेको दिव्य आ भव्य मन्दिर मिथिलामे पड़ल अछि। देखियौ श्रोतागण, मिथिलाके इतिहास बड्ड नीक छै, बड्ड बढ़िआँ छै, आओर एहि तरह मिथिलाके ई जे छै बहुतो तीर्थस्थल जे छै ई मिथिलाके दर्शनीय स्थान जे छै मिथिलाके गौरवमय इतिहासके साक्षी बनल अछि। श्रोतागण, समय अनुकूल आओर पुनः गपशप करब, एखन अपनासभ एकटा सुन्दर सन मैथिली गीत सुनै छी।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, इससे पहले अपना सब अरविंद कुमार झा सँ ई सुंदर सन गीत सुनै छलहुँ। श्रोतागण, अब बेर भऽ रहल अछि प्रायोजित कार्यक्रम उड़ानके, तऽ सुनल जाय ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं हमारा नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ 8860088827।
0: तो श्रोताओं आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
2: दोस्तों एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कामयाबी और नाकामी ये जिंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी जिंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इसे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी जिंदगी में लेते हैं, ये चीज जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
3: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊं। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था लेकिन उसने अपनी लगन से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
2: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सबके लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियां हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा,

0: लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए, असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए असफलता भी बहुत जरूरी है, असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, हमें समझ में आता है ओ ठीक है ये चीज मेरे से फेल हो गई तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे हम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमजोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है, और उसने उन सब चीजों पर ध्यान देते हुए IAS क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूंगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये जरूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है और बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूंगी आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहां पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है, अगर आपकी कमजोरी है आप ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ, और ज्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ भी बहुत बहुत हाई है, उनका EQ भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशेंट, प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेजी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे, तो वो जो बात है जो आलस है या अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए, लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया, अचानक से उनकी शादी हो गई, और वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली, पैसे का एक दफा आपको टेस्ट लग गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप चाहती हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले, 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके लिए एक दफा आप इंतजार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, साथ में आप कुछ नहीं छोटे बच्चे को संभाल रही हैं तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की, और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बनें, MBA करें, MA करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है, आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए, और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
0: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि जिंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, जिंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नजर से उसको देखते हैं, लेकिन वह अपनी जिंदगी में सफल हो गया, और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
1: बन जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है, और हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने

0: सोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुंचे। लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे जाएं और वहां पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर 300 रुपए में कोर्स हो रहा है, 500 रुपए में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आपको कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए और आप देखेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप में अगर मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है और सब कुछ अवेलेबल है।
1: लेकिन कभी अशमा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कभी कभी हमें जिंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज का चुनाव तो अपनी जिंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं, या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था। तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज पे चले जा रहे, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे और जिंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो आईएएस ऑफिसर बने या आईपीएस ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो आईएएस के रूप में या आईपीएस के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद अच्छे आईएएस ऑफिसर वो बने या अच्छे आईपीएस ऑफिसर बने और समाज को उन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की जरूरत है कि क्या हमने जिंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए
0: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए, और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए, अगर जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाव को खोने न दें, बल्कि जिंदगी का मुकाबला करें, एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं, इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।

0: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

हाँ, अखन अपना सब ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनै छलहुँ। देखियौ श्रोतागण, ई उड़ान प्रायोजित कार्यक्रम जे अछि अपन नव युवा श्रोता लोकनिके लेल अछि, आ एहिसँ अपन जीवनके सकारात्मक दिशामे नीक ऊर्जाके साथ आगू बढ़ि सकै छथि, अपन रास्ताके चुनि सकै छथि। ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अपना सब सुनै छलहुँ। आब एहि सङ्ग गाम घर कार्यक्रमके अन्तर्गत झरोखा कार्यक्रम आब सम्पन्न होबय पड़ैछ। मीर कुमार झाके आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

ये था हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित गाम घर, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, स्वागत है।

0: कार्यक्रम किसान वाणी में मैं हूं संजय किशोर
1: और मैं हूं प्रिया। तो किसान वाणी कार्यक्रम में संजय जी, सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएं कि आज के इस अंक में क्या क्या प्रसारित होने वाले प्रमुख विषय हैं।
0: जी, जरूरी है कि हम पहले जान लें कि आज हमारे इस अंक में किन किन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, तो बताइए।
1: हम जानेंगे धान का फुदका कीड़ा, ये कैसे लगता है और इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसके लक्षण के बारे में और किस तरीके से इसका बचाव किया जा सके।
0: और साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
1: वहीं हम बात करेंगे मशरूम के जो किसान हैं उनके बड़े ही फायदे के बारे में, जो कि बिहार सरकार ने उनको ये सौगात दिया है। अभी फिलहाल उस पे हम विराम रखते हैं।
0: और साथ ही हम आपको लोकगीत भी सुनवाएंगे
1: और साथ ही साथ आप सभी किसान भाइयों और बहनों के फायदे के लिए एक वार्ता भी जरूर सुनवाएंगे, जिसका विषय है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग।
0: कुछ नसीहत होगी आपके लिए और समसामयिक सूचना भी हम आपको देंगे।
1: तो मौसम को भला कैसे भूल सकते हैं, तो मौसम की जानकारी भी आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कृषि चर्चा की, जिसकी हमने बात की धान का फुदका कीड़ा, जिसे हम लीफ हूपर भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये लीफ हूपर होता कैसे है, वो दिखने में कैसा होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से वो धान के जो फसल है उसे नुकसान पहुंचाता है।
0: ये छोटा भूरे रंग का या हरे रंग का कीट होता है। यह पौधे के तने के निचले हिस्से से रस चूसता है। तो आवश्यक है कि इस कीट के होने वाले नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले इसके लक्षण को हम समझ लें।
1: ये जो लक्षण है, इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पौधे कमजोर होकर के सूखने लगते हैं, वहीं अधिक प्रकोप होने पर खेत में जगह जगह सूखे हुए हिस्से दिखाई देते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहा जाता है।
0: तो इससे बचाव के लिए हमारे जो किसान भाई और बहन हैं, वो कुछ विशेष बातों पर ध्यान रख सकते हैं। खेत में लगातार अधिक पानी न रखें, आवश्यकता के अनुसार जल का प्रबंधन करें या जल की निकासी अगर संभव हो तो वो जरूर करें।
1: खेत में नाइट्रोजन उर्वरक का संतुलित उपयोग करें, वहीं नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें।
0: और यदि प्रकोप अधिक हो जाए तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
1: तो समय पर पहचान और उचित प्रबंधन से धान की फसल को फुदका कीट से बचाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई धान के फुदका कीड़ा की,
0: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को खेती से जुड़े खर्चों में सहायता के लिए हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
1: वहीं ये राशि साल में 3 किश्तों में दी जाती है, प्रत्येक किश्त 2,000 की होती है। ये पैसा सीधे किसान भाइयों एवं बहनों के बैंक खाते में भेजा जाता है और इसका माध्यम है DBT।
0: इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय में सहयोग देना और खेती के लिए आवश्यक खर्चों में मदद करना। अब बात इस योजना के लाभ किन किसानों को मिल सकता है, इसके बारे में आपको बता दें।
1: तो बता दें कि आवेदक भारत का किसान होना चाहिए, किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए, वहीं आधार संख्या और बैंक खाता होना आवश्यक है, EKYC पूरा होना चाहिए, यानी कि आपको KYC कराना बहुत ही जरूरी है ताकि किश्त का भुगतान हो सके।
0: और अब बात करते हैं मशरूम के उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में। बिहार सरकार की पहल से अब तक मशरूम की खेती की जा रही है। कम लागत में बेहतर कमाई का ये बहुत ही अच्छा जरिया है।
1: मशरूम किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है, यानी वो किसान जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही, कहते हैं ना, बम्पर धमाका है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार में मशरूम की खेती को कृषि श्रेणी में शामिल किए जाने से बिजली दरों में राहत का रास्ता खुला है, और ये बहुत अच्छी बात है ना संजय जी।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है कि किसानों के लिए हर तरह से हमारी सरकार प्रयास कर रही है,
1: और ये जो प्रयास है ना, ये कहीं ना कहीं एक मानसिक सुकून देता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और मानसिक सुकून की जहां तक बात करें, ये सुकून सिर्फ बातचीत से तो पूरी नहीं हो सकती।
0: तो अब क्या इरादा है?
1: इरादा तो मेरा बिल्कुल वही है जो वादा किया है हमने अपने श्रोताओं से। सावन का महीना आते ही पूरी प्रकृति हरियाली का चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर पड़े झूले रिमझिम फुहारे और मन को छू लेने वाली लोक धुने इस मौसम की पहचान बन जाती है।
0: जी जी, प्रिया जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोकगीत सुनाने वाली हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनते हैं, क्योंकि मैंने झूले की बात कही तो क्यों ना झूला

0: ये गीत तो प्रिया जी बहुत ही प्यारा था, और इस प्यारे से गीत के बाद हम अब अपने किसान भाइयों के लिए क्या बताने वाले हैं?
1: देखिए, खेती तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई और बहन है, खेती के साथ ही साथ पशुओं का पालन भी करते हैं। तो पशुओं का जब पालन आप कर रहे हैं, तो ठीक अपनी सेहत का जिस तरीके से हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही पशुओं के भी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है।
0: जाहिर सी बात है कि बरसात का समय है और पशुओं में कोई ना कोई रोग लग ही जाता है, और इस रोग से बचने के संबंध में कुछ बताना चाह रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है कि पशुओं में जो खुरपका

0: मुहपा का रोग होता है वो इन दिनों बहुत ज्यादा हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो इसकी जानकारी हमसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ही देंगे। तो सुनते हैं इस वार्ता के माध्यम से पशुओं में खुरपका मुहपका रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर अजीत कुमार।
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। शहरीकरण होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। पशुपालन के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार जैसे दूध, मांस आदि मिलता है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान स्वयं को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता, प्रजनन क्षमता, कार्य करने की क्षमता एवं मांस उत्पादन क्षमता पर पशुओं को दिए जाने वाले आहार के अलावे पशुओं में होने वाले जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी जनित रोगों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि पशुपालक को पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हो तो पशुपालक तुरंत रोकथाम के उपाय को अपनाकर एवं पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं के उत्पादक क्षमता में होने वाले अत्यधिक हानि को कम कर सकते हैं एवं अपने पशु को भी अकाल मृत्यु से रोक सकते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग, जिसे अंग्रेजी में फूट एंड माउथ डिजीज या FMD के नाम से जाना जाता है, यह एक संक्रामक विषाणु जनित अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जो प्रायः खुरबटे या कह सकते हैं खुरफटे पशुओं अर्थात जिस पशु का खुर दो भाग में बटा होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य जंगली पशुओं को काफ़ी प्रभावित करता है। खुरपका मुंहपका रोग काफ़ी तेजी से फैलने वाला एक बीमारी है, जो किसी भी उम्र के पशुओं एवं उनके बच्चों में हो सकता है। इस रोग को खुरहा, भंजहा, FMD, चमसिया, चपचपिया, आभा आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकार का RNA विषाणु है, जो पिकोरना समूह के अंतर्गत आता है। इस विषाणु के 7 प्रकार और अनेकों प्रकार हैं, जिसमें AOC, ACR1, ACR2 एवं SAT मुख्य हैं। हमारे देश में AOC एवं ACR1 विषाणु के प्रकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार संक्रमित पशु के सांस एवं रोगी पशु का जूठा आहार या चारा तथा पानी के ग्रहण करने पर दूसरे पशु के शरीर में इस रोग के विषाणु प्रवेश कर रोग पैदा करता है। संक्रमित पशु को देखरेख करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कपड़ों के द्वारा भी इस रोग के विषाणु का फैलाव होता है। इस रोग के होने में नम वातावरण, पशु दुर्बलता, संक्रमित पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आसपास के क्षेत्रों में रोग का प्रकोप का इतिहास आदि सहायक कारक जो रोग के तेजी से प्रसार में मदद करता है। खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित पशु में सर्वप्रथम तीव्र बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। संक्रमित पशु के जीभ, मसूड़ों, नथनों, होठों, तालू आदि पर छाले हो जाते हैं। पशु खाना पीना कम कर देता है। छाले होने के कारण संक्रमित पशु के मुंह से झागदार लार गिरता है एवं होठों से चपचपाहट की आवाज आती है। खुरों के बीच भी छाले हो जाने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है और वार वार अपना पैर जमीन पर झटकता है। इस रोग के होने के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है। गर्भधारण किए हुए पशुओं में गर्भपात होने की पूरी संभावना इस रोग के होने के बाद होती है। थनों पर छाले पड़ जाने पर दुधारू पशुओं में थनैला रोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। खुरपका मुंहपका रोग की पहचान पशुपालक प्रभावित पशु के मुंह एवं खुरों के बीच घाव एवं अन्य लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। चूंकि यह एक विषाणु जनित छुआछूत का रोग है, जिस

0: इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। अतः रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पशुओं को देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मुंह में बने घावों के साफ करने में 2% पोटासियम परमैंगनेट के घोल या बोरिक एसिड एवं ग्लाइसरीन या बोरेक्स एवं नारियल तेल या शुद्ध एलम के घोल आदि का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले पर बोरोग्लिसरीन हल्दी युक्त घी या मक्खन लगाने से मुंह में चिकना हो जाता है और पशु को चबाने में आराम होता है। खुरों एवं थनों पर बने घाव को 1% पोटासियम परमैंगनेट या फिनाइल के घोल से धोना चाहिए एवं फिर जीवाणुनाशक स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार धोना लाभदायक होता है। खुर के घावों को शीघ्र ठीक करने के लिए पशु को 2% तूतिया के घोल से धोना चाहिए तथा पैर में पड़े कीड़े के होने से बचाने के लिए आइवरमेक्टिन नामक सुई का 0.2 mg प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर त्वचा में लगाना चाहिए। मुंह पैर अथवा थन के घावों के इलाज के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अथवा एंड्रोफ्लोक्सासिन की सुई 5 mg प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर मांस में 3 से 5 दिन तक पशु चिकित्सक के सलाह पर लगवानी चाहिए। अति तीव्र अवस्था में बुखार की दवा तथा कभी कभी सीरा मार्ग से पानी भी चढ़ाया जा सकता है। बी कम्प्लेक्स और खनिज मिश्रण सहायक दवा के रूप में देने से रोग को कम समय में ठीक किया जा सकता है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं पुआल भूसा आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ देना चाहिए। रोगी पशुओं को खाने में नरम एवं आसानी से पचने वाले आहार जैसे हरा चारा या घास देनी चाहिए। मुंह में घाव रहने के कारण पशु को कड़ा आहार देने पर खाने में दर्द होता है, अतः ऊर्जा युक्त द्रव्य आहार जैसे गुड़ छोया का घोल पिलाना फायदेमंद साबित होता है। जिस जगह पर रोगग्रस्त पशु को रखें वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दें। रोगग्रस्त दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद दूध दुहने वाले भी अपने हाथ एवं मुंह को साबुन से धो लेना चाहिए। रोगग्रस्त पशु का इलाज सदैव पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करनी चाहिए। इस रोग में यद्यपि व्यसक पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन रोग के ठीक होने के बाद पशु के शरीर पर के बाल एवं खुर बड़े बड़े हो जाते हैं। पशु के धूप सहने की क्षमता घट जाती है एवं दुधारू पशु का दूध उत्पादन रोग होने के पहले के जैसा नहीं हो पाता है। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के उपरांत भी महीनों हाफते रहता है। इन सब कारणों से पशुपालक को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। चूंकि यह एक विषाणु जनित रोग है जिसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं है, अतः इस रोग के इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज्यादा ध्यान देकर खुरपका मुंहपका रोग से पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं। टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु बछड़े को सर्वप्रथम 4 माह की उम्र पर प्रथम टीका लगवानी चाहिए, फिर उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर टीका फरवरी एवं सितंबर के महीने में लगवाते रहें। अगर बगल वाले गांव में खुरपका मुंहपका रोग फैलने की सूचना मिले तो अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावे बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। इस रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु को नहीं खरीदना चाहिए। पशुपालक पशुशाला को सदैव साफ सुथरा रखनी चाहिए। संक्रमित पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से पशु को मिलती रहे। इस बीमारी से मरे पशु को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि जमीन में गहरे गड्ढे में मृत पशु को डालकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देनी चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, अभी हमने इस वार्ता के माध्यम से जाना कि किस प्रकार पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग से उन्हें बचाया जा

0: सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर अजीत कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से भी संजय जी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नसीहत जरूर दे दें अपने किसान भाइयों और बहनों को।
1: जी, हमारा तो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लाभ उन्हें हो, तो जो भी नसीहत आप देना चाहती हैं बताइए, हमारे किसान भाई सुनेंगे।
0: तो पशुपालन की हमने बात की और खुरपका मुंहपका की ही बात की, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करते हैं। पशुओं में PPR, FMD एवं HS यानी गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है। पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की आवश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगाए हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें।
1: इसके साथ ही सब्जियों से संबंधित कुछ और भी नसीहत हम देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को। खरीफ प्याज की रुपाई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान यानी कि जब बारिश हो रही है, इस दौरान नर्सरी को खरपतवार से मुक्त रखें। जहां आवश्यकता हो वहां समय पर निकाई गुड़ाई करें। तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट लगाएं। मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें।
0: तो ये तो हमने अपनी नसीहत आपको दी, वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, ये कैसे जाने। तो इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है,
1: और इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्व हवा चलने का अनुमान है।
0: तो ये तो हमने जानकारी दी मौसम की, और मौसम के साथ ही साथ हमारा ये जो समय हो चला है वो समाप्त होने की तरफ है।
1: तो अब हम चाहेंगे कि किसान भाई जो इस कार्यक्रम से लाभ ले रहे हैं या उनके मन में किसी प्रकार का कोई विचार आ रहा है, कोई प्रश्न है, तो इसके लिए हमारे पास एक फीडबैक का पता है,
0: और वो पता है हमारा ईमेल आईडी aarpatna@gmail.com।
1: तो इसी के साथ मुझे यानी संजय किशोर को
0: और मुझे यानी प्रिया को
1: आज्ञा दीजिए,
0: नमस्कार।
2: खेतों की आवाज, देश की पहचान।
3: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, हाई का ले आई इतनी बोरियों में?
4: खाद है सरजू भाई, यूरिया, DAP, पोटास, यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस, घाटे का सौदा है खेती।
3: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
4: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
3: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी, और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
4: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
3: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
4: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
3: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां और उनका समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 12 अगस्त 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-4541-651। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-4541-651। रिकॉर्डिंग की तारीख 12 अगस्त 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमएचओ रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। एक रिपोर्ट।
1: सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखड़ी में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र ब्रूड बैंक की शुरुआत हुई। इसके निर्माण में 10 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत आई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित की गई है। इसके निर्माण में भुवनेश्वर का सीफा और ICAR ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। 38 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में 60 तालाब है। इस प्रक्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ स्पॉन उत्पादन होगा। इसमें जयंती रेहू, अमृत कतला और अमोर कार्प की प्रजातियां शामिल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव का कहना है कि यह ब्रूड बैंक अंतर प्रजनन की समस्याओं को दूर कर राज्य को गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसमें कतला, रोहू और अमूर कार्प जैसी प्रजातियां की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही यह केंद्र राज्य की सभी हेचड़ियों को

0: प्रमाणित बुरड और स्पान की आपूर्ति करेगा, जिससे सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों सहित पूरे राज्य के मत्स्य पालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
1: इसके पूर्व श्री चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही परिसर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2028 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर मां जानकी को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है।
2: एक एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है, तो इन चीजों को और बढ़ाने के हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रीस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
3: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 के छात्रों का दीक्षांत समारोह आज पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 28 छात्राएं और 10 छात्र शामिल हैं, जबकि 1305 स्नातकोत्तर छात्रों और 155 PhD शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा सहयोग के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने का प्रयास होगा।
4: शिष्टाचार मुलाकात की और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा है, PPP मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं।
1: भारतीय भुगतान परिषद PCI ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क होगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क

0: भी लिया जाएगा। परिषद के अनुसार व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक लेन देन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के योगिया गांव में पिछले दिनों हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बाद में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने मृतक के परिवार को भी सुरक्षा देने की मांग की। इस बीच रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपित अजीत तिवारी को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का शव बरामद करने की कार्रवाई जारी है।
2: हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अवगत पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है। साथ ही उस छोटापुर नहर के पास SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है।
1: देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की कल से शुरुआत हो रही है। वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह अभियान शुरू हुआ था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रेरणा का यह अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए।
3: इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
1: इस अवसर पर प्रदेश भर में कल से विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 17 अगस्त तक चलेंगे। अभियान को लेकर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने भी जिलावासियों से इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: प्रिय जिलावासियों, हर घर तिरंगा अभियान 2026 दिनांक 9 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपना श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करने का है।
1: प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और बक्सर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के सिसवन में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। रानी पूजा ने ब्लिट्ज वर्ग और रैपिड वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि ओपन रैपिड वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इसके साथ ही साकेत कुमार ने ओपन ब्लिट्ज वर्ग में स्वर्ण पदक और ओपन रैपिड वर्ग में रजत पदक जीते। अमन कुमार ने ओपन अंडर 2000 के रैपिड वर्ग में रजत पदक पर कब्जा जमाया। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। कप्तान सपना कुमारी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय दल आज पुणे के लिए रवाना हो रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राज्य

0: वीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि टीम में 2 गोलकीपर, 6 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 4 फॉरवर्ड शामिल हैं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने श्री कृष्णा सेतु के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 33 मवेशियों को जब्त किया। इस मामले में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को निगरानी विभाग ने 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी 17 लाख की मशीन उपलब्ध कराने के लिए रिश्वत मांगने पर की गई। शिवहर जिले में गश्ती के दौरान पिपराही थाने की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में वाहन चालक चौकीदार रामजी राय की मौत हो गई, जबकि दारोगा अशोक सिंह समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनोद दुल्हन ने स्वीकृत 31 आवेदकों के घर की छत पर 3 दिनों में सोलर पैनल स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में 12 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और प्रभावी तरीके से अभियान के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक शाखाओं को ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन करने और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। 17 अगस्त को रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ELC एंड ECINET आयोजित होना है। इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के गठन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि युवाओं को मतदान, निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माई भारत पोर्टल पर ऑनलाइन नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में मिशन मोड में विशेष राशन कार्ड निर्माण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1,04,750 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। महादलित टोलों सहित सभी पात्र लाभुकों तक अभियान का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के पहले 100 दिन पूरे होने के अवसर पर बीते दिनों वैशाली जिला मुख्यालय सहित सभी अनुमंडलों, प्रखंडों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने जिले में विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
0: और अब सुनिए पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सत्यम कुमार।
3: पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पिपरा कोठी अंचल में

0: 5 एकड़ सरकारी भूमि को 30 वर्षों की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लीज में नवीकरण का विकल्प भी शामिल होगा। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने राखी भेजने वालों के लिए विशेष पहल की है। रेल डाक सेवा यू मंडल की ओर से अंतरदेशीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाने वाली राखी मेल पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। यह सुविधा 12 अगस्त से प्रभावी होगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 राखी मेल स्पीड पोस्ट लेखों पर छूट का लाभ लिया जा सकेगा। लिफाफे पर राखी मेल लिखकर मोतिहारी रेलवे स्टेशन स्थित बुकिंग काउंटर से बुकिंग कराई जा सकती है। काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा। जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने और शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। इधर नीलाम पत्रवाद के बड़े बकायादारों के विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई बकायादारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं। इनमें जय मां दुर्गा राइस मिल, मन्नू ट्रेडर्स एंड राइस मिल, शिव शक्ति राइस मिल, आर्यानंदिनी राइस मिल, विवेक राइस मिल और अन्नपूर्णा राइस मिल शामिल हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वैशाली और पूर्वी चंपारण जिले की हलचल।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी पटना के साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आजादी के जश्न से पहले देश एक खास अभियान में प्रवेश कर रहा है। जी हां, हर घर तिरंगा अभियान। इस साल 9 अगस्त यानी कल से 17 अगस्त तक देश के हर घर पर लहराएगा तिरंगा। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव से शहर तक पूरे अदब और शान के साथ फहराया जाएगा तिरंगा। लेकिन क्या है हर घर तिरंगा, क्या है इसका महत्व और इस बार क्या है इस अभियान में खास, इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है आज का हमारा कार्यक्रम सामयिक चर्चा। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से बना एक ध्वज नहीं, यह भारत की पहचान है। यह हमारे गौरव, संघर्ष और एकता का प्रतीक है। इसका केसरिया रंग हमें साहस और त्याग की याद दिलाता है। सफेद रंग शांति और सत्य का संदेश देता है और हरा रंग समृद्धि, विकास और धरती से हमारे रिश्ते को दर्शाता है। और बीच में है मौजूद अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वो सिर्फ एक घर की पहचान नहीं रहता, वो भारत के करोड़ों घरों को एक साझा भावना से जोड़ देता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा में, और उससे पहले हमने आपको सुनवाया फिल्म डर में। कलाकार थे उदित नारायण। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति

जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू

गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए।
सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने

0: आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: उड़ान कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी निर्णय जिंदगी का हो, अगर जिंदगी के बेहतर भविष्य के लिए हो तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और खास करके जब रोजगार की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, कोर्स चुनने की बात हो तो अपने आप से पूछना चाहिए कि भैया तू किस में जाना चाहता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तेरा मन किस में लगता है। किसी के कहने से नहीं, खुद के कहने पर विचार करना चाहिए। इसीलिए उड़ान कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे कोर्सेज की जानकारी जो आपके जीवन में स्थायित्व लाएगी, ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ढेर सारा पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको एक करारा जवाब मिलेगा जब आप इन कोर्सेज को कीजिएगा। ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें बीसीए और बीबीए का जो कोर्स है ना, बहुत ही वाइब्रेंट है। जी हाँ, जिसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। उड़ान कार्यक्रम हर साल इसी समय आता है और युवा साथियों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है। फिर भी हम कहते हैं कि हमारी बातों पर नहीं, अपने आप पर भरोसा कीजिए, R&D कीजिए, तलाशिए कौन से कोर्स, अगर मैथमेटिक्स आपका सही है, अगर फिजिक्स सही है, अगर आपने PCM किया है तो किस कोर्स की तरफ जाएं तो आपके लिए अच्छा करियर होगा। और ये कार्यक्रम हमें आप तक पहुंचाने में वर्षों से मदद कर रहे हैं और ये मदद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हो रही है। सामाजिक उत्तरदायित्व तो है कि हम समाज से कुछ लिए हैं तो समाज को कुछ हम दें, और ऐसे में उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया आर्किड बिजनेस कॉलेज ने। आर्किड बिजनेस कॉलेज बहुत ही उम्दा कॉलेज, ये हम नहीं कह रहे, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए बिहार के लिए कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई कहाँ कहाँ अच्छी होती है। पहला नाम जरूर आर्किड बिजनेस कॉलेज का आना चाहिए। ये पटना में है, ये पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। 27 वर्षों से आप युवाओं के साथ काम कर रहा है, और इसीलिए

0: ये हम इस संस्थान यानी आर्केड बिजनेस कॉलेज का आपको नंबर दे रहे हैं, इस पर बात कर लीजिए। कहीं भी कोई परेशानी हो बीसी और बीबीए के लिए, यहाँ एकदम आधुनिक, हाँ एकदम उत्तम क्लासरूम की व्यवस्था के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ पढ़ाई होती है, और करियर में कहाँ जाना है रोजगार का भी असिस्टेंस दिया जाता है। नंबर नोट करें, 7520800 7520800 8। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से एकमात्र ऐसी संस्था है जो बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। और स्थायी मान्यता प्राप्त होने का क्या मतलब होता है?
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: सुन लिया ना, इसीलिए कहते हैं कि करियर का चुनाव, इंस्टीट्यूशन का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में आशीष आदर्श जी आए थे, उन्होंने कहा था ना कि हर संस्थान अपने संस्थान को बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में दिखाता है, लेकिन असलियत क्या है इसे जानने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका सबसे अच्छा जरिया हो सकता है वहां के स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़कर निकल चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ युवा छात्रों की हमने प्रतिक्रिया ली जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से बीसी और बीबीए कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत के अंश हम आपके लिए भेजते हैं इस स्टेशन से।
4: सर, मेरा नाम रिया राज है, अभी मैं बीसीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। बीसीए मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, मतलब कंप्यूटर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एआई वगैरह को जानने में मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरी, मशीन्स वगैरह को जानने में, इसको एक्सप्लोर करने में, कोडिंग वगैरह को सीखने में, पाइथन, जावा, C++ इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जॉब ही लेना चाहती हूँ टेक कंपनी में, और यहाँ बहुत ऐसा मतलब आते रहता है अपॉर्चुनिटी। आर्केड बिजनेस कॉलेज, वैसे मुझे तो रिकमेंडेशन मिला था मेरे एक फ्रेंड से जो अभी सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, फिर मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद फर्स्ट डे ही, जिस दिन मतलब सारे स्टूडेंट का ये इंस्ट्रक्शन होता है, उस दिन ही अनुपम मैम से मैंने मिला। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो मतलब बहुत विलिंगली ट्राई कर रही हैं कि हम लोग का मतलब फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो उसके बाद यहाँ की फैकल्टी से इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग का। उसके बाद यहाँ के सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ मतलब ट्राई किया जाता है कि बच्चे को पुश किया जाए उस चीज में। अब ये तो हमारे पे निर्भर करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा जॉब, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिना पढ़े ही सब कुछ मिल जाए। बैठ के सोचने से कुछ होगा नहीं, अब आप अपने आप को जितना इग्नोर करते रहोगे उतना अब मतलब गड्ढे में गिरते जाओगे, क्योंकि एटलीस्ट सबको पता है कि पटना में, बिहार में और पूरे भारत में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग अपने फ्यूचर के खिलाफ एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम और भी गिरते चले जाएंगे और उस लाइन में चले जाएंगे जहां हमसे कोई कभी नहीं पूछेगा। तो अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, तो लेना ही चाहिए एडमिशन सबको। आर्केड बहुत सहयोग कर रहा है क्योंकि ये लोग सारे कंपनीज लगभग लाते ही रहते हैं हम लोग के लिए। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है सब कोई। अब ऐसा तो नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी लापरवाही वगैरह भी कुछ नहीं है। इवेंट्स वगैरह में भी ले जाया जाता है, और ऐसे ऐसे इवेंट्स में ले जाया जाता है जिससे हम लोग का मतलब लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन इन इवेंट्स के कारण उनका कॉन्फिडेंस भी खुलता है। तो और क्या ही चाहिए,
0: और क्या ही चाहिए। वाह वाह, बहुत खूब, एकदम लबरेज है, हाँ कॉन्फिडेंस से। आशा है कि अच्छे कॉलेज आर्केड बिजनेस कॉलेज में आ गए हैं, नौकरी मिलेगी ही। और इस छात्रा ने सारी चीजें बता दी, हाँ रिकमेंडेशन था, मैं यहाँ आई, देखी फैकल्टी क्या है, इवेंट्स होते हैं, कंपनीज आती है, सारा कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। हाँ, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता है। ये होता है संस्थान की ताकत और अपनी ताकत, जो उन्होंने कहा कि संस्थान चाहे लाख कुछ कर ले, लेकिन लेकिन लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीसीए और

0: बीबीए हम बार बार, राजेश आपका बार बार कह रहा है कि बहुत ही उम्दा, हाँ बहुत ही उम्दा कोर्स है, और आर्किड बिजनेस कॉलेज के विषय में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप सर्च करें, देखें, लोगों से पूछें, संस्थान में जाएं, जो दिल में आए सो पूछें। 27 साल से लगातार कोई संस्थान खड़ा है तो कुछ ना कुछ होगा। अगर आपको जानकारियां और चाहिए तो नोट करें नंबर 7520800 पर डायल करें और जानकारियां लें। सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
1: मेरा नाम सुजल कुमार हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं अभी BCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट जब ज्वाइन किया था तो उस समय से ही काफ़ी एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ कंप्यूटर और डेटा साइंस के फील्ड में काफ़ी कुछ अच्छा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और यहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने एक्चुअली हेल्प करते रहते बीच बीच में स्टूडेंट्स को, और मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन होते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स और अपने करियर गोल के बारे में फोकस होकर के डिसीजन ले सके।
0: बिल्कुल सही, फोकस्ड होना तो बहुत जरूरी है और इसमें संस्थान बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकता है। हमने जो दोनों स्टूडेंट से बातचीत के अंश सुनवाए आपको, सारे लोगों ने यही कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, बाहर भी ले जाया जाता है, फैकल्टी भी कोऑपरेटिव हैं, कंपनीज भी आती है रोजगार के लिए, माहौल बहुत अच्छा है और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ आर्किड बिजनेस कॉलेज में आकर। हर स्टूडेंट को अपने संस्थान के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन सोचेंगे तभी जब ये सुविधाएं मिलेगी। हाँ, शिक्षण संस्थान चलाना एक विजन होता है, एक अपनापन होता है कि हमें इन बच्चों को आगे पहुंचाना है, और इसमें आर्किड बिजनेस कॉलेज हमने देखा है कि अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ता नहीं है। बहरहाल हम बातें कर रहे हैं BCA और BBA, जिन लोगों ने PCM हाँ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कोर्स किया है ना, उनके लिए बहुत ही उम्दा कोर्स है। आशीष जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर जो आपको इंजीनियरिंग चुनना हो और BCA और BBA चुनना हो ना, तो दोनों में से किसको चुना जाए, बड़ा लॉजिकली उन्होंने बताया था। अभी हम सुनवाएंगे, अभी एक बार फिर से वैसे बच्चों के लिए जो अभी भी इनडिसिसिव हैं, अभी भी सोच रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए उनका वो बाइट हमने रखा हुआ है, मैं सुनवाऊंगा। उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से, जहां BCA और BBA की उम्दा पढ़ाई होती है। अगर आपको कोई भी, हम ये नहीं कहते कि आप वहां एडमिशन ले लो जाके, देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, अगर ऐसा लगे तो आप जुड़ जाइए और फोन पर बात करके आप आ जाइए या सीधे आ जाइए। लेकिन फोन नंबर हम आपको बताते हैं, 7520800 ये नंबर है, डायल करें, पूरी जानकारियां एकदम तफसील से लें। लेकिन संस्थान स्थायी मान्यता प्राप्त होना तो बहुत सारी परेशानियां नहीं आती हैं, जैसे ये,
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ना हो, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने PCM किया है लेकिन इनडिसिसिव हैं, इंजीनियरिंग जाएं या BCA या BBA की तरफ जाएं। आशीष जी आए थे इस कार्यक्रम में, उन्होंने क्या कहा था, सुनिए।
5: मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप जरूर करिए और आप देखिए उसका कितना फायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप MCA कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। MCA करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो IT कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA, वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए, और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके

0: कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
1: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप करियर काउंसलर भी हैं, आप बच्चों के मन को अच्छे से समझते हैं, आप टेक्निकल पढ़ाई को भी समझते हैं, और लोगों के बीच आपकी बात एक मायने रखती है। बहरहाल, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जो आशीष जी ने बातें कही ना, उसको तथ्यों पर रखकर तौलिए और फिर डिसीजन लीजिए, सेंटिमेंट में नहीं, किसी के कहने सुनने में नहीं। हम कह रहे हैं, यानी राजेश कह रहा, आशीष जी कह रहे, लोग कह रहे हैं बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसको भी तौलिए, समझिए, जानिए, परखिए, बीसी और बीबीए की पढ़ाई आपको कहाँ कहाँ ले जा सकती है। हाँ, सारी चीजें हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये सही है, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से लगातार आप युवाओं के साथ लगा है आपके ब्राइट करियर के लिए। नोट कीजिए नंबर जहां आप बात कर सकते हैं, 7520800800, 7520800800 ये नंबर है। जाइए, देखिए, सुनिए, परखिए और तब बातचीत कीजिएगा, है ना? समझ रहे हैं ना, मेरे कहने से नहीं। तो बस आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने की अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रस्तुत आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल से पहले आप सुन रहे थे कुमकुम झा के स्वर में लोकगीत, अगली प्रस्तुति शारदा सिन्हा के स्वर में।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: कुंज बिहारी के गाए इसी गीत के साथ लोकगीत का हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए

0: एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
3: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब

0: ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कट

0: में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present.

0: सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने आईआईटी दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंकारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर दाखला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एसयू
3: फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
4: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निज़ाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कास्ट 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मुफाहमतनामों पर तिजारत और सनअत के सनअती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मुफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस शराकत दारी का मकसद टायर 2 और टायर 3 और देही खित्तों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फीन को यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेन देन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेन देन पर ही होगा और ये बहुत मामूली शरह होगी। वजारत ने कहा है कि अदायगी और तस्फीये के निज़ाम से मुतालिक एक्ट में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद UPI के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावुज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नई और काबिले तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत में गुज़िश्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रवायती ईंधन पर मबनी नस्बशुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगमील से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत एक साफ सुथरे माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है।

0: खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए, जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकरदार रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निज़ाम इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वह आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुज़ाकरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
1: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक हमारी वहां पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, तो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उजरदारी दाखिल की गई है जिसमें 14वें जेपीएससी इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफ़ी नहीं है और यह मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज़ कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ़ और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण

मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं, विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहाँ राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई। जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक

वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्र

0: आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र

0: होश करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीना तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे सिक्किम से, मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस विषय में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम की, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तब तो और उनका कहीं रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और

0: कविताओं में लड़ी गई और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: आई बिलीव दैट आई मस्ट प्रूव द एज ओल्ड प्रोवर्ब दैट द वुमन हैज द लास्ट वर्ड एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। आई हैव द लास्ट वर्ड नो डाउट नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन बट बिकॉज आई एम एक्टिंग टुडे एज अ होस्टेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बात

0: में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
1: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीप शिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस

तोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen जपताल और द्रुत तिनताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्री इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिनताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री will now present राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश

पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज़ बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज़ बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। रात के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। रात के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।